एते कर हम बहुत बसाए तब हम राम गर्भ होए आए। बड़े वारे जीवन मिलिया जोबन मिलिया पर जोबन चला गया। भगत रविदास साहब भी ऐलानिया अरदास कर रहे ने खुदावंद करीम दे सामने कि बहुत जन्म बिछरे थे माधो ते हुण जन्म मिले ते जोबन ते मिले गए। कदी चलो मिल गया कदी ना मिलिया पर समझन वास्ते कह लिए जोबन बड़े मिले। भगत रविदास साहब भी मिलदे जुलदे लफज वरत रहे ने ओ भी कहिंदे ने कि बहुत जन्म बिछरे थे माधो एह जन्म तुम्हारे लेखे कह रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे। फरीद साहब कहिंदे ने प्रेम चाहिदा ते रविदास साहब कहन लगे निरंकार दीदार चाहिदा। गल एक ही है तेरा प्रेम तेरा दीदार इस जोबन दे अंदर हो जाए मेरा जोबन सफला हो जाए मेरा जोबन मुबारक हो जाए। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र ते निकी गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनों भगत फरीद साहब जी दी रसना द्वारा उचारे हुए श्लोक दो श्लोक आप संगत दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए। इन्हां दोहां श्लोकां दे अंदर ही बिरहा दा जिक्र है। सब तो पहला बंदे दे मन दे अंदर मोह बनदा है मोह और मोह दी परिभाषा इस तरह कह लईए कि जो घर दी चार दवारी दे अंदर अंदर रहे उदा नाम मोह है। घर दी चार दवारी दे अंदर अपना परिवार चंगा लगदा है दूजियां दे परिवार चंगे नहीं लगदे। अपने बच्चे चंगे लगदे ने दूसरे दे बच्चे चंगे नहीं लगदे। तो मोह खतरनाक ता है क्योंकि मोह दे अंदर अपना अपना लगदा है ते दूजे अपने नहीं लगदे। तो जद दूजे अपने लगदे नहीं तो फिर किसे दूजे नू उजाड़न लग्यां डर भी किस चीज दा है। जद कोई दूसरा अपना लगदा ही नहीं तो अपना नहीं ते फिर दूसरे दे नाल हमदर्दी भी कादी है। मोह दे अंदर बंदा दूसरे नू उजाड़ सकदा है अपने आप नू वसाउण लई। मोह दे अंदर बंदा दूसरे दे कारोबार नू बंद कर सकदा है अपना कारोबार चलदा रखण लई। मोह दे अंदर बंदा दूसरे बच्चे दे मुंह विचों भोजन खो सकदा है अपने बच्चे दे पेट पूर्ति वास्ते। मोह दे अंदर दूसरे नू दुख दे सकदा है अपनियां खुशियां लई। दूसरे नू रुवा के अपनियां खुशियां लभण दा यतन करदा है ओ बंदा जिस बंदे दे मन दे अंदर मोह है ते मोह दी तारा बड़ी प्रबल ते डूंगी हो के चल रही है ए बंदा मोह तों कुर्बानी दे जांदा है तमाम गुणां दी मोह दे उत्तों कुर्बानी कर देंदा है। हुण थोड़ा समझ दा दायरा वधना शुरू हो जाए इसनों सारे अपने लगने शुरू हो जान गुरबाणी दी कथा कीर्तन सुनद्या सुनद्या गुरबाणी दा कोई वाक मन नूं चोट कर जाए इनों सारियां विच परमात्मा नजर आना शुरू होवे महसूस करे जिस तरह दे मेरे बच्चे ने उस तरह दे दूसरियां दे बच्चे ने। जिस तरह दा दुख मेरा है इस तरह दा ही दुख दूसरे दा। जिस तरह दा गरीबी दे अंदर मैं दुख नूं हंडारिया गरीबी सारियां वास्ते इको जिही दुखदाई है दूसरे लिए घट नहीं है। जिन्ना कलेश मेरे अंदर इन्ना ही कलेश दूसरे दे अंदर है। प्रेम दे अंदर आया होया बंदा किसी नूं दुख देण तों पहला उस जगह दे उत्ते अपने आप नूं खड़ा करके वेख लैंदा है। अगर इस जगह दे उत्ते मैं खड़ा हुंदा ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ
प्रेम दे अंदर आया होया बंदा इन्हां गल्लां दी विचार करनी शुरू कर देंदा है। तो जद ये गल्लां विचार दे अधीन आ जान तो फिर पाप हुंदा ही नहीं है, अपराध हुंदा ही नहीं है। पाप अपराध कदों हुंदा है? मन ने बुराई नूं चितविया है ते तन उसे वक्त ओह काम करन वास्ते उठ के तुर पिया है। मन ने कह दिता है विचारी करनी चाहीदी है, तन उसे वक्त नालों नाल इस राह दे उत्ते चल पिया है, अपराध होया ते पाप होया। मन ने कह दिता है चोरी होनी चाहीदी है, तन नालों नाल उठ के किसी की जेब कतरन लई किसी का घर उजाड़न लई चोरी करन लई चल पिया, अपराध होया पाप होया। अगर मन कहे चोरी करनी चाहीदी है ते तुसी इस विचार नूं विचार अधीन कर लो, परखना शुरू कर दो, रिड़कना शुरू कर दो भी ये कम चंगा है जां बुरा है, तो आप चंद समय बाद पाओगे तुहाडे मन दा भी मनोबल डिग गया है। मन दे अंदरों हुण आवाज आ रही है पर बड़ी मदम, फिर विचारी जाओ, इस विचार नूं रिड़की जाओ, कुछ समा बीत जान तो बाद पाओगे विचार मन विचों निकल ही गया है, चोरी करन दा इरादा ही बदल गया है। मैला विचार बनदिया सार मैला कर्म करन वाले बड़े वड्डे पापी दुराचारी अपराधी जगत दे अंदर मिलदे ने। मैला विचार बन जाए उन्नू समा देना, उस विचार नू डिले करना, इस तरह दे मनुखां कोलों ना पाप हुंदा है ना अपराध हुंदा है। तीसरी क्वालिटी दे ओ मनुख ने जिहड़े बहुत उत्तम ने, जिन्हां दे मन दे अंदर मैला विचार बनदा ही नहीं है। खैर किसी वक्त मैं फिर अर्ज करांगा, अर्ज मैं कर रहा सां प्रेम दे अंदर अपने बच्चियां वर्गे दूसरे दे बच्चे भी नजर आ जांदे ने, ते जद दूसरे दे बच्चे भी मेरे बच्चियां दे बराबर दिस रहे ने तो फिर दूसरे दे बच्चे नूं रुवा के अपने बच्चे नूं हसाउण दा यतन किवें कर सकांगे? दूसरे दे बच्चे दे मुंह विचों भोजन दा टुकड़ा खो के अपने बच्चे दे पेट दे अंदर किवें तोर सकांगे? क्योंकि दूसरे दे ते अपने दे अंदर हुण कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। फिर इस तरह दी अवस्था दे अंदर पहुंचिया होया मनुख दूसरे दी गरीबी, दूसरे दी दीन दशा, दूसरे दी भुख नूं वेख के मिटाउण दा यतन करदा है, ना मिटा सके ते उहदे हिरदे दी डूंघाई विचों इक अरदास हुंदी है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला। फिर वह अरदास करदा है निरंकार सब दा भला कर। ठीक है मेरी लोड़ है भोजन, पर दूसरे दी लोड़ भी ते भोजन है, इकली मेरी लोड़ ते नहीं है। मेरी लोड़ है कपड़ा, दूसरे दी लोड़ भी ते कपड़ा है, इकली मेरी लोड़ ते नहीं है। जो मेरियां लोड़ां ने उस समाजिक प्राणी होने दे नाते सब दियां लोड़ां ने। मैं किसे दियां लोड़ां खो लवां, दातां खो लवां और अपनियां लोड़ां पूरियां करां, ये मैनू शोभा नहीं देंदा। फिर वो दूसरे नूं भी हसाउण दा यतन करदा है जितनी उसकी समर्था है, ते जद समर्था खत्म हो जांदी है ते फिर वो अरदास करदा है परमात्मा सब दा भला कर, ते सब दा भला मंगण वाला सब दे घेरे दे अंदर आप भी आ जांदा है। इस तरह नहीं है कि आप सब दे घेरे तो बाहर रहिंदा है, सब दे दायरे विच वो आप भी आ जांदा है। सब दे घेरे दे अंदर तमाम पशु परिंदे जीव जंतु मनुख मातर सब कुछ आ जांदे ने, दिसन वाले ना दिसन वाले सारे जंतु आ जांदे ने सब दे घेरे दे अंदर। तो एक दस्तूर है जो सब दा भला मंगदा है वो कर भावे ना सके, क्योंकि करना तो उन्ना ही है ना जिनी समर्था है, कर भावे ना सके पर जो मंगदा है परमात्मा उहदा भला अवच करदा है, ते जो दूसरे दा बुरा मंगदा है एक दस्तूर है परमात्मा दा बनाया होया उहदा अपना बुरा हुंदा है अवच हुंदा है। दूसरे दा बुरा मंगना एवें समझ लो अपने वास्ते बुराई मंगन दा तुसी राह खोल रहे हो, तुहाडा बुरा होवे ए यतन कर रहे हो, दूसरे दा भला मंगना समझ लो ए यतन कर रहे हो कि मेरा भला होवे। अगर ये नुक्ता समझ विच आ जाए ते आप कदी किसे दूसरे दा बुरा मंग ही नहीं पाओगे। मैं ना लफ्जां नूं दोबारा दोहरा दिया, दूसरे दा बुरा मंगोगे बुरा कर नहीं पाओगे, क्योंकि जो भी देना है परमात्मा ने देना है, साडे हाथ विच ते है नहीं।
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਈ ਤੁਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਭਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਅਰਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਮੰਗਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਲਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੋ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਣਕਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ, ਭਲਾ ਵੇਖਣਾ, ਭਲਾ ਸੋਚਣਾ। ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਲਾ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੋ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੇ ਕਲੇਸ਼, ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੋ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਬਸ $5 ਦੇਣੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੋਰੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਧਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਮੁੜਾਂ। ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਮੋਹ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਲੱਖ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਰਹਿ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਧਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ 10-12 ਸੜ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋਈਆਂ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਚ ਗਈ ਸਬੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 10-12 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੜ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਹ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਰਾਖ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬਚ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਚ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਸੜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਮੋਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਕੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਏਗਾ? ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੜ ਗਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬਚੀ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਸੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਕਰਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਹੌਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਰੋਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵੇਖ ਕੇ ਅਕਸ਼ਬਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਦੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਖੈਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਬੜੇ ਸੱਜਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਿਰਦਾ ਭਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਣ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੰਝੂ ਉਤਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵੀ ਬਖਸ਼, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਿਰਦਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਦਰ ਪੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
प्रेम ही अगे जाके पकदा।

जिन श्रेया तिने सुवारेया पूरी कोई करामात आप सृजन हारे तारेया सिखी अत संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारया अटल अथाह अतुल तू तेरा अंत ना पारा वारया जिनी तू सेविया पाओ कर से तुद पार उतारया

या धन सो तेरा थान है, सच तेरा पैश करया, नानक तू लहना तू है, गुर अमर तू विचारया, गुर डिठा ता मन साधारया, सो कहो तल गुर सेवी है, ऐनिस सहज सो पाए, दर्शन परसें गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए, बेशुमार अथाह अगंत अतुल, ज्यों बुलाव हो त्यों नानक दास बोले, ज्यों बुलाव हो त्यों नानक दास बोले। परम सम्मान योग युगो युग अटल, चवर शतर दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हाजूरी अंदर सुभाए मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों, हाजूर दी कृपा नाल आप जी हफ्तावारी दीवान दी हाजरी भर रहे हो, बड़े प्यार दे नाल आप जी ने गुरमुखा पासों गुरु तेग बहादुर जी दी इलाही गुरबाणी शरण कीती है। कुदरती तौर ते जिस स्थान ते मनुख ने कुछ समाज सेवा कीती होवे ते जिस स्थान तो दाते ने कृपा करके झोली विच दाता पाईया होन ते असल विच गुरसिख दा मन परत परत के उसे स्थान दा ते उसे गुरु दा शुक्र करदा है। एही तां इक गुरु के सिख दा सब तो वड्डा गुरु कृपा नाल बख्शिया होया एक गुण है। आम तौर ते लोग जदों मकान दी छत ते चढ़ना हुंदा है ते एक एक पौड़ी ते पैर रखदे ने, एक एक पौड़ी दे डंडे नूं हाथ विच पकड़दे ने, ते मनुख दा एक सुभा है जिन्नी देर तक छत नहीं मिली उन्नी देर तक पौड़ी दे डंडे पौड़ी दा आसरा तकदा है, ते जदों उन्नू पौड़ी दे आसरे नाल छत दी प्राप्ति हुंदी है ते जिदे राही छत मिली उहदे वल कुदरती तौर ते पिठ हो जांदी, चढ़दा पौड़ी दे राही है पर उसे पौड़ी वल पेठे। गुरु कृपा करे कैसे प्यारे बचन गुरमुखा कह, जिस पौड़ी दे नाल गुरु ने एक कृपा कीतियां उहदे वल ध्यान रखे, हजूर मेहर करो हर एक प्राणी मात्र दी ए बिरती बन जाए तेरा शुक्र करन दी। आओ साध संगत धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी इलाही बाणी विचों आपां ने विचार करनी, कृपा करया जे

नानक होशी पी सच सगल गुणा के दाते स्वामी बिनो सुनो एक दिना देहो दर्श नानक बलहारी

ज्ञान त्यान किच कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। ज्ञान ध्यान किच कर्म न जाना,

0: सहमत हां कि एक पंगत विच बैठ के गुरु का लंगर जेड़ा वो छकना चाहिदा है। ध्यान देना, भाई गुरदास ने चर्चा कर करके सिद्ध कर दिता सी कि एक पंगत विच बैठ के लंगर छकना चाहिदा है। मैनू एक खिनली मैं निकलन लगा, बड़ी सुन के प्रसन्नता हुई है कि इथो दे सुचजे प्रबंधक साहबाना नू संगत ने एक फैसला कीता है कि जो सामने टेंट लगा है गुरु कृपा नाल ओहदे विच पंगतां ला के गुरु का लंगर छकिया जाएगा। प्यारियो, कदी भावना नाल जीवन विच कमा के देखिया जे, केवल ए बिरती ना तक्यो किसे बंदे दा हुक्म है, लंगर छकन लग्या बस एक भावना बना लिया जे कि गुरु अमरदास दा जो दरबार लगा है मानो अकबर भी मेरे कोल बैठा है, क्योंकि अंदर दी भावना बनानी पैनी है, अकबर भी मेरे कोल बैठा है। ते याद रखना, जदों भावना नाल पंगत विच बैठ के लंगर छकोगे फिर देखना अंदर नू किन्ना सुख मिलदा है।
1: मैं अर्ज करां
0: भगत पूरन सिंह दे जीवन नू मैं पढ़िया पिंगलवाड़े वाले, उन्हां दे जीवन विच बड़े कमाल दी गल मिली। मैं अपनी विचार तो थोड़ा जिहा निकल गया पर जरूरी, भगत पूरन सिंह जी ब्राह्मण परिवार नाल संबंधित ने, ते कहिंदे ने मैं देव आलिया विच गया, उन्हां दी लिखत स्वै जीवनी विच कहिंदे ने पुजारी ने प्रशादे इकट्ठे करके लियांदे, उन्हां नूं सवाल कीता तू सिख किवें बणिया, ते केवल सिख नहीं पाणी चलै निवाण वाला गुण जे वेखणा ते भगत पूरन सिंह विच तको, लोक तां सके पुत्तर नूं सके बाप नूं रोग लग जाए ते अंदर खाते यही कहिंदे ने रब्बा इहनूं हुण समेट लै ते गल चंगी ए बाहरों जरूर तुरनगे। वाह ओ भगत, जेड़े लोग मौत ते जिंदगी दे विच अड़े हुए सन, जिन्हां नू अपनी किरिया संभालन दी कोई अकल नहीं, तू ता उन्हां लोकां नू अपने मोढ़ियां ते चुक चुक के गंदगी साफ करके उन्हां दी सेवा कीती, ए भी पाणी चलै निवान। नीवे पासे उन्हां ने अपनी जीवनी विच गल कही, कहिंदा सिखो जे मेरे तो पुछोगे मैं सिख क्यों बनिया, कहिंदा मैनू सिख तुहाडा गुरु का लंगर बना गया। पुछा भी किवें, वो कहिंदा मैं मंदिर भी जांदा सां, मैनू भुख लगी अत दा गरीब सां, दो दिन हो गए लंगर नहीं मिलिया, पुजारी ने लंगर लियांदा प्रशादा लियांदा अपने पुत्र नू बिठा के तां रोटी खवा दिती, मैं सामने बैठा सां मैनू एक भी रोटी का टुकड़ा नहीं दिता। कहिंदा छोटे साहबजादियां दी शहीदी सी, मैं फतेहगढ़ साहब आया ते मेरी भुख अजे मिटी ना, जदों मैं लंगर विच आया एक पासे महाराजा भुपिंदर सिंह बैठा है ते उहदे खब्बे हत्थ बैठ के मैं जमीन ते लंगर छकिया, ते मेरे मन ने उस दिन फैसला कर लिया मना जे अज तो बाद घर जाने ते इस गुरु दा सिख बन के जाई जिथे राणा ते रंक जिथे अमीर ते गरीब एक थां ते बैठ के लंगर छकदे ने। कहिंदा उस दिन दा मैं आया परत के गुरु नानक दे घरों दूर नहीं गया। एक बड़ी वड्डी उदाहरण है साडे सामने। खैर, मैं इस करके आप जी नूं मुबारकबाद देना वा, देखो गुरु कृपा करे साडे अंदर नूं निर्माणता बख्शे, इस हौं तो बच जाइए। जिहड़ा हुक्म हुंदा है ना उहदे सामने फिर तर्क नहीं हुंदा, हुक्म किसे मनुख दा नहीं मेरे गुरु नानक दा हुक्म समझ के तू कमा लई ते तेरे जीवन नूं किन्ना कु सतगुरु सुख देणगे। खैर, मैं अर्ज कर रहा वा भाई साहब कहिंदे सिक्खी दा दूजा गुण ए वे के पाणी निवान नूं तुरदा है। भाई गुरदास ते सवाल कीते गए, असी मन लिया लंगर दी पंगत संगत एक है, असी मन लिया बाणी श्रोमणी है, असी मन लिया के नाम विच बड़ा महात्म है, पर साडे मन विच एक शंका पैदा होया है कि उस शंके नूं निवृत करेगा भाई गुरदास। भाई साहब कहन लगे गुरु नानक दी कृपा होई ते जरूर निवृत करांगा। भाई साहब दी बाणी दी उदाहरण ने कोई कहानी नहीं, सवाल कीता विद्वान पंडित ने, कहन लगा भाई गुरदास तैनू पता है कि जेड़े नीवी जात वाले ने ना असी उन्हां नू कुत्तियां दे बराबर तुलना देने हां। भाई साहब दे बचन ने, मैं अर्ज करांगा, कहन लगे असी नीवी जात वालियां नू कुत्तियां दे बराबर जानने हां, पर एक सानू बड़ा वड्डा शंका है, असी डूम नू कूकर जानने हां, असी मराशियां नू कुत्ते तो वध तुलना नहीं देंदे, पर हद हो गई तुहाडे गुरु नानक ने तां भाई मरदाने नू अपने नाल रखिया सी, गुरु नानक ने सारी जिंदगी मरदाने नू भाई किया ते अज भी तुसी ओदी अंश कुल बैठ के शब्द सुनदे हो, उन्हां तो अरदासां करांदे हो ते जदों ओ कीर्तन

मूर्ख मुगदा जन्म पया परणवत नानक तिनके शरणा जिन तू नाही विसरिया परणवत नानक तिनके शरणा जिन तू नाही विसरिया। परम सम्मान योग चवर शतर दे मालक शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों, आप जी ने बड़े प्यार दे नाल हजूर दी इलाही गुरबाणी दा

बंदी कुछ कौतक जो बाला प्रीतम ने बाल अवस्था विच चोज रचाए उना दी विचार आपां कर चुके हैं। आओ साध संगत जी, जिथे गुरु गोबिंद सिंह जी दा आगमन पुरब 25 तरीक नू आपां मनाया है, उथे 22 दिसंबर नू मेरे हजूर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे वड्डे साहिबजादियां दा शहीदी दिवस सी। आओ चमकौर गढ़ी दा साका उस इतिहास नू गुरु कृपा नाल आपां ने वाचना, साध संगत आप मेहरामत करो तां जो उस प्यारे सतगुरु दे इस जीवन नू हजूर दे इस अलोक कारनामे नू गुरु कलगी वाले दा ए भी एक बचित्री नाटक सी जड़ा अजे तक किसे ने खेड़िया ना, किन्नी हैरानी पैदा करन वाली एक घटना है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप मेहरामत करो, आप ही अंदर दी एकाग्रता बख्श के अपने इस पावन पवित्र इतिहास दी विचार करा लो। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, जदो आपां हजूर दे पावन पवित्र जीवन नूं पढ़ने आं ते उन्हां दी पावन पवित्र बाणी दे आधार ते हजूर ने अपनी बाणी विच जिवें आपां बचित्र नाटक विच बचन सरवण कर रहे सां कि मेरे आउण दा प्रयोजन की है, ते साहिब ने इक्को सवैये अंदर इस पूरी घटना नूं अंकित कर दिता, ते साहिब ने बचन कीते दशमेश सतगुरु ने कि हम ए काज जगत मो आए, मैं इस काज लिए संसार तिस जगत ते आया, धर्म हेत गुरदेव पठाए। पठाए दा अर्थ हुंदा भेजा गया। हजूर कह रहे ने मैं कुछ कम करना आया, ते उस गुरदेव ने उस अकाल पुरख वाहगुरु ने मैनू इस काज वास्ते इस संसार ते भेजिया। हम ए काज जगत मो आए, धर्म हेत गुरदेव पठाए। की काज है साहब? किन्ने ने जहां तहां तै धर्म चलाए। साहब जी बचन करदे ने आपां सवैया ए सरवण भी कीता, एक तां पंक्ति ए हुंदी है, जहां तहां तै धर्म चलाए, कबुद्ध करन ते लोक हटाए। ते इथे बचने जहां तहां तै धर्म बिथारो, दुष्ट दोखियन पकड़ पिछारो, यही काज धरा हम जनमंग, समझ लियो साधु सा मनमंग, कास वास्ते धर्म चलावन संत उभारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन, धर्म नू चलान लई परमेश्वर दी बंदगी करन वालियां नू उभारन वास्ते। ते गुरु गोबिंद सिंह कहंदे ने हे साधु जनो, एक गल ध्यान नाल इस नू समझ लवो कि धर्म चलावन संत उभारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन, ते जेड़े जालम बिरती वाले लोग ने उन्हां दुष्टां दी मूल दर ते मैं जड़ पटन वास्ते आया। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी दे जीवन नूं पढ़ने आ ते बड़े प्यारे कुछ कु बचन प्रोफेसर प्यारा सिंह पद्म ने कीते ने। ओ कहिंदा तीन किस्म दे संसार विच आम तौर ते इंसान पैदा हुंदे ने। उन्हें शब्द इंसान वरते है, कहन लगे तीन किस्म दे आम इंसान पैदा हुंदे ने, ते पुछया केड़े, ते उन्हें एक गल के कुछ लोग ऐसे ने कि जिन्हां दे पिता पितामा जिन्हां दे बाप दादियां ने इन्ने कु वड्डे कारनामे कीते हुंदे ने, ते जिथे भी ओ बैठदे ने ते अपने बजुर्गां दे कारनामे अपने पिता पितामा दे कौतक नूं उन्हां दी बहादुरी दी चर्चा करके अपने अंदर नूं लोकां विच अदब दवा लैंदे। आप उन्हां दा जीवन नहीं पर अपने पिता पितामा दी उस शोहरत नूं उन्हां दे बल नूं उन्हां दी ताकत नूं ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮਾ ਆਪ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮਾ ਮਹਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ

सतगुरु तेनू छड़ के नहीं ते सतगुरु ने बचन किया बुढ़िया जा मैं तेरे नाल बचन करना वा तेरे तो ओले कदे ना होसा मैं किसे भी रूह विच होवांगा पर तेनू पता होगा मैं किथे टिकिया होया वा पंक्ति बड़ी रमज भरपूर है तेरे तो बुढ़िया ओले कदे ना होसा बाबा बुढ़ा जी नमस्कार करके पिछा आ गए ते जिदन भाई लैणे नू गुरगद्दी दिती लैणे तो गुरु अंगद बने पहली नमस्कार गुरु नानक साहब ने कीती उस वक्त माता सुलखनी भी कोल आई उन्हें एक शब्द कहा सी दाता लै गद्दी तां सेवक नू मिल गई पर पुत्रां दा की बनेगा इन्हां दा प्रसाद पानी ते गुरु साहब ने जेड़े बचन कह कवि संतोख सिंह ने गुरु प्रताप नानक प्रकाश भी दिते ने कह लगे सुलखनीए आ गुरु दा दर ऐसे ही एदे दर ते बैठे हुए कुत्तियां दे पैरां विच भी करामाता होणगियां ए ते मेरे पुत्र ने इन्हां दी क्यों नहीं लोग सुनगे उत्थे इक शब्द क्या कह लगे ए बाबे के होणगे बाबा श्री चंद ते लक्ष्मी दास ए बाबे के होणगे ते जोत जिहड़ी है गुरु अंगद साहब दे कोल होवेगी उत्थे शब्द कह गुरु घर के जे होए सवाना जिहड़े गुरु दर दे कूकर होणगे तिनको पूजा सगल जहाना लोग उन्हां दी पूजा करनगे अज गुरु नानक साहब जी तो जदों जोत भाई लैणे विच टिकन लगी ते विच विचोला कौन बन गया बाबा बुढ़ा जी पहला तिलक गुरियाई दा भाई लैणा जी नूं बाबा बुढ़ा जी ने लाया गुरु नानक साहब नूं नमस्कार।

ओहम पातिक बिना सह गुर अमरदास परसिय सिद्ध साधक आशा सह गुर अमरदास परसिय ध्यान लइया पौ मुकह गुर अमरदास परसिय अपौ लभै गौ चुकै एक बिन दुगण जो तो रहै जा सुमंत्र मानवल है जाल पाप दार्थ इतड़े गुर अमरदास डिठ मिले कान हर बूंद बसोरू मावल कुसुम बसंत गणंत नयावै रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र त्यान ज्ञान सतगुर कै कब जन पल उन्हें सो गावै

परम सम्मान योग जुग हो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाई मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों हजूर दी पावन पवित्र इलाही बाणी दा कीर्तन और गुरमत विचारा आप जिया ने सत्कार योग भाई साहब भाई जगजीत सिंह जी खुरां पासों सरवण कीतियां ने कल दा दिन जो बतीत होया है कल दे दिहाड़े धन गुरु अमरदास महाराज तीसरे गुरदेव दा गुरगद्दी नशीनी पुरब सी ते गुरु अमरदास महाराज जी दे इस पुरब नूं आपां अज मना रहे हां। गुरु नानक साहब जी दे इस घर दे अंदर जदों आपां इतिहास नूं गुरमत नूं पढ़ने हां ते एक चीज बड़ी विलक्षण सानूं जिहड़ी नजर आउंदी है इत्थे गुरु दी किरपा ते निर्भर करदा है। 7 साल दा बजुर्ग बाबा भी जे किते गुरु के चरणा भी जुड़ के सेवा करे ते जिस समय लोग कहिंदे ने 70-72 साल दी उमर विच बंदे नूं सूझ कोई नहीं शब्द वरतदे ने इह 70-72 गया। 12 साल गागर ढो के 72 साल दा बजुर्ग भी सिख तो गुरु बन सकदा है। यही विलक्षणता है कि इत्थे 5 साल ते 3 महीने की बाल उम्र गुरु हरकृष्ण साहब जी वो भी गुरु बन सकते ने ते कृपा गुरु करे तो 72 साल का बजुर्ग भी गुरु बन सकता है। आओ गुरु अमरदास जी दे पावन पवित्र इतिहास की और बाणी की विचार आपने करनी है जड़ा अज का दिन गुरगद्दी पुरब आप मना रहे हैं। इस दी विचार इस दिन दे संबंध विच गुरु कृपा नाल आपां विचारने कृपा करके जितने भी बैठे हो ना एकाग्रता जरूर बख्शिया जे। कोशिश करो इस खिंडे हुए मन नूं गुरु अमरदास जी दे चरणा विच अज टिका दईए। जे तां बुद्धि तारक केवल तर्क करन वाली नाल सुणांगे ते याद रखना वह कहा होया केवल तर्क की बिरती वाला लगेगा ते जदों प्रतख गुरु नू हाजर नाजर जान गुरु के बचन सरवण करांगे ते सतगुरु गुरु अमरदास की कृपा वरसेगी। विचार आरंभन तो पहला सतगुरु की बख्शिश कीती हुई गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा अमरदास जी का जन्म पिंड बासर के जो अजकल जिला अमृतसर के अंदर है सन 1479 नू बाबा तेज भान जी दे ग्रह विखे होए। बाबा अमरदास जी गुरु नानक साहब जी तो उम्र करके केवल 10 साल छोटे ने। गुरु नानक साहब जी का आगमन सतगुरु का प्रकाश सन 1469 नू राय भोए दी तलवंडी ते होया गुरु नानक साहब जी का ते बाबा अमरदास जी का प्रकाश इन्हों का जन्म आगमन शब्द वरत लईए के पिंड बासर के 1479 नू होया है। 10 साल बाबा अमरदास सतगुरु गुरु नानक साहब तो छोटे ने। बाबा अमरदास जी दे पिता दा नाम तेज पान है। बाबा अमरदास जी 4 भरा ने ते अमरदास जी सब तो वड्डे ने।
मैं शब्द वरत्या बाबा इस करके वरतनिया अजे वह गुरगद्दी ते विराजमान नहीं। बाबा अमरदास सब तो वड्डे ने, छोटे तीन भरा ने, ते इथों तक यह कारोबार अपना जिमीदारा भी पिंड विच करदे सन। उस तो इलावा महिमा प्रकाश विच तां इह भी लिखिया रेशम दे कपड़े दा वपार करदे ने। कहण तो मुराद वपार भी करदे ने, दुकानदारी भी करदे ने, ते बाबा अमरदास जी का पूरा परिवार जिहड़ा है जिमीदारा भी करदा है। बाबा अमरदास जी दे संतान इन्हां दे घर दो पुत्र ते दो पुत्रियां पैदा होईयां। वड्डे दा नाम सी बाबा मोहन जी, छोटे पुत्र दा नां है बाबा मोहरी जी, वड्डी पुत्री दा नां है बीबी दानी जी, छोटी बच्ची दा नां है बीबी भानी जी। बीबी दानी जी दा आनंद कारज होया भाई रामा जी दे नाल, ते बीबी भानी जी दी शादी उन्हां दा ब्याह उन्हां दा आनंद कारज होया भाई जेठे दे नाल जिहड़े बाद विच गुरु रामदास बने। बाबा अमरदास अपने पिंड विच टिके ने, पिता इन्हां दे भी दया दी धर्म दी मूर्त ने, ते इन्हां दे मन विच इक फुरना उठदा है जिहड़ा मन दा टिकाओ वे। जिहड़े असी प्रभु तो कई जन्मां दे विछड़े हां, कोई तरीका है कि अंदर दी भटकना दूर हो जाए ते उस प्यारे प्रभु जी दे चरणां विच लीन हो जाइए। ते इसे गल नूं मुख रख के बाबा अमरदास जी ने एक टीचा मिथ्या है कि हर साल मैं गंगा ते जाके इशनान करना है, दान पुन करना है, आए गए दी सेवा करनी है। हो सकता है कि गंगा दा इशनान करन दे नाल मेरे इस मन नूं टिकाओ मिल जाए, मेरा अंदर किते भटकनों बच जाए, मैं उस प्रभु दे चरणा विच लीन हो सकां। ते बाबा अमरदास एक दो साल नहीं, 19 वारी ओ तीर्थ इशनान करन गए ने। कईयां ने शब्द भी वरत्या, खैर तीर्थ इशनान गंगा इशनान हर वार करन जांदे ने, ते महीनियां बद्दी समा लगदा है पिंड बासर के तो गंगा इशनान करना, ते जाना जाके उत्थे दान पुन भी करना, उत्थे बड़े आराम नाल गंगा दा इशनान करके साधुआं महापुरुषां दे कोल भी बहना। ते अज 20 वार जदों बाबा अमरदास जी गंगा तो वापस पै आउंदे ने, ते रस्ते विच एक पिंड आया मेड़ा, जिसनूं पिंड मिठड़ा भी कहा जांदा है। इस पिंड दा एक बहुत ही स्याणा विद्वान पंडित है जिहड़ा ज्योतिष विद्या विच भी बहुत माहिर है, ते इन्हें अपने घर दे विच एक मानो सरां दा ढंग तरीके नाल मकान बनाया है कि जितने भी यात्री गंगा इशनान करन जान ते जां गंगा इशनान करके वापस आउंदे होण, उन्हां नूं जल पानी की सेवा करनी, प्रसाद पानी उन्हां लई तैयार करना, ते रस्ते की थकावट दूर कर ली, जितने दिन भी कोई रहना चाहे ते उह विद्वान पंडित अपने घर विच रखदा सी। ते यात्रियां दा एक सुभा सी कि उहदे घर विच दो चार दिन आराम करन तो बाद जान लग्या उहदी तली ते कुछ ना कुछ माया जरूर रख जांदे सन भी चलो इह बंदा सेवा करदा है। बाबा अमरदास अज इह भी उस पिंड विच पहुंचे ने, उस पंडित विद्वान दे घर अंदर उहदी सरां दे अंदर उन्हां ने बड़े आराम दे नाल जाके प्रसाद पानी छकिया। कहन लगे गर्मी दे दिन सन, ते बाबा अमरदास जी उहदे घर तों बाहर निकल के उहदे लवाए हुए बाग दे अंदर जाके टिक गए, ते गर्मी अत दी पैंदी है। बाबा अमरदास उस रुख दी छां थले टिके ने, ते किन्ने इस पंडित दा नाम सी दुर्गो, सार सुत भिंबी गोद दा सी। ए पंडित अपने घर तों बाहर निकलिया, बाग विच पए हुए यात्रियां दे कोलों लंघिया, ते ज्योतिष विद्या दा माहिर किन्ने ने उस वक्त इस पंडित ने ना बाबा अमरदास जी नूं लेटिया देखिया, ते बाबा जी वक्खी परने हो के पए ने, चरणा दियां दोनों तलियां दिसदियां पईयां ने। विद्वान पंडित सी, बाबा जी दे चरणा दी तलियां विच उहने पद्म देखिया, ते देख के सतगुरु के बाबा जी दे चरणा विच खलो गया। कहन लगा हे मना, मेरी विद्या कदी झूठी नहीं हो सकती, जे इहदे चरणा दे अंदर पद्म है ते एक गल ध्यान विच रखना, जां ते इह आउण वाले समें दे अंदर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा,
ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਤਮ ਵਰਤੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਦਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸੋਚਿਆ, ਜਿਸ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿਤਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਆਪਣੀ ਬਾਂਸੁਲੀ ਥੈਲੀ ਖੋਲੀ, ਕੁਝ ਕੁ ਮਾਇਆ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਈ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦੁਰਗੋ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਭਾਰੀ ਸਮਰਾਟ ਤੂੰ ਰਾਜਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਬਣੇਗਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਰਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਣ ਆਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੈਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਰੇਖਾ ਰੇਖਾ ਫਲੇਗੀ, ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਦਣ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਿਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਰੇਖਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਰੇਖਾ ਭਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਏਗੀ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੁਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਦਮ ਪੜਿਆ ਪਦਮ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੁਰਗੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹਨੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਸਫ਼ਰ ਮਕਾਂਦਿਆਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਆਪਾਂ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਏ? ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਕੇ ਤੂੰ ਦਾਤ ਲਈ ਏ? ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਪਣਾ? ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਖਿਰਦਾ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਏ? ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਗੁਰਾ ਹੂੰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਲਕ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਪਿਆਵਾਂ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਦੇਈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਕਰ ਦੇਈ, ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਸੋ ਜਿਹਾ ਨਗੁਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਗੁਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੀ

इनू चैन आया ते कई वारी किसे बंदे दी छोटी जी गल भी अंदर इन्ना कु असर कर दिए बंदा कितने समय लिए उस गल नू सोचण लई मजबूर हो जांदा। कहन लगा अजे तक तू गुरु वाला नहीं, देख बुढ़ेपा आ गया ते सतगुरु ने बाणी विच बचन भी बड़े प्यारे कहे। कहिंदे ने बंदे नू एक आस हुंदी है साहब, कहिंदे ने जदों जन्म होया ना ते बचपन विच एक आस है जे कुछ दिन खेडण दे ने खाण पीण दे ने ते अजे मेरे ते जवानी आउणी है ते जवानी तो बाद इस मनुख नू एक आस है कि पुत्र धीआं वड्डे होए अजे इन्हां दी कमाई नाल मैं सुख मानना, मेरे ते बुढ़ेपा आउणा। ते गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने उस बंदे नू मैं पुछ के देखां जिन्हें बचपन का समा जवानी दी इंतजार विच बतीत कीता, जवानी बुढ़ेपे दे आउण दे समें विच बतीत कर दिती, हुण बुढ़ेपे तो बाद की आस ला के बैठा की मिलेगा? ते पुछया सतगुरु तुसी दसो। कहन लगे मेरा ते उत्तर इको ही, फसल बीजिए एक आस है जे जमीन विचो निकलनी है अजे कच्ची कोमल फसल ने निकलना, जेड़ी फसल जमीन विचो निकल आवे एक आस है अजे ने डटरी होना है, अजे ने कच्ची अजे पक्की होना है, ते जेड़ी फसल पक जाए ओदे ते इको आस है अज जा कल जिमीदार आवेगा अपने मजदूरां नू लिया के दातरियां नाल कट के इन्हां नू घर लै जाए। कहन लगे सजना तू तां परमेश्वर दी फसल है, ध्यान रखी कि ए रब दी मर्जी है, बचपन ओ कच्ची फसल ही, जवानी डडरी फसल ही, ते जदों केस कालियां तो चिट्टे हो गए उदों फसल पक चुकी है, उदों तां सिर्फ इको ही आस है अज जां कल मौत जिमीदार ने आउणा है उहने इस फसल नू कट के अपने नाल लै जाणा। पक्की हुई फसल केवल कट्टी जांदी है, पक्की तो बाद की करांगे? हजूर ने बाणी विच क्या हरी नाहे ना डडरी, ए दरते जे हरी फसल नहीं कट्टी गई ते डडरी दी आस ना करी, हो सकदा डडरी तो पहला कोई कट के लै जाए। हरी नाहे ना डडरी पक्की वड्डन हार, लै लै दात पहोतिया लावे कर तैयार, जा हुक्म होवा किसान दा ता लुण मिणिया खितार, जितन रब ने हुक्म कर दिता उदू बाद इस फसल नू वाढी जरूर पाएगी। बाबा अमरदास नू सिर्फ इन्नी कु गल ठोकर मार गई कि मना तू गुरु तो विछड़िया, तू रब तो विछड़िया। ते मैं कई बारी अर्ज करना हुन्ना जदों ए महसूस अंदर हो जाए ना बाणी पढ़दिया कि मैं रब तो विछड़िया वा, मैं गुरु तो विछड़िया वा, ते एक आस करियो कि परमार्थ दा एक कदम आपां ने पट लिया। दुनिया नू तां ए भी पता नहीं असी रब तो विछड़िया कि नहीं, लोकां नू तां ए भी समझ नहीं मेरा गुरु की ते मैं गुरु तो विछड़िया वा। जिस बंदे नू इन्नी समझ पै जाए ठोकर वज के कि मैं अजे गुरु नाल नहीं जुड़िया, जिस बंदे नू रोग दा पता लग गया ओ वैद नू भी जरूर लभेगा, जिस बंदे नू ए ही पता नहीं मैं रोगी हां उहने वैद कोल जाके करना की। बाबे अमरदास नू इन्नी कु समझ पै गई तू प्रभु तो विछड़िया है, ते गुरु कृपा करे हर बंदे नू ए समझ पै जाए। कबीर साहब ने बाणी विच इक पवित्र बचन कहा, कहिंदे ने जदों शाम पैंदी है ना उन्हां ने उस वक्त दे समय नू मुख रख के बचन उचारिया, कहिंदे ने शाम पैंदी है वपारी भी अपने टिकाणे ते रात नू आराम करदा है, तुरन वाला राही भी किसे सराम विच रुक जांदा है, जिमीदार भी शाम नू थक के घर आ के टिक जांदा है, दुकानदार चाकरी करन वाले भी ज्यादातर रात नू घर आ टिकदे ने, पर कबीर साहब कहिंदे ने रात नू सारे आराम करदे ने पर एक आवाज रात नू मेरे कन्नां विच गूंजदी है, ते सोचना वा ए कौन है जिन्हू रात भी आराम नहीं, ए रात भी उच्ची उच्ची पुकारदा है। ते कहिंदे ने जदों इस आवाज दी सेध नू मैं गया ते की देखिया एक चकवी बड़ी उच्ची उच्ची पुकारदी पई है, पता नहीं कुदरत दा एक नेम है जदों शाम पैंदी है चकवी ते चकवे दा विछोड़ा पै जांदा है। विद्वान सज्जना ने बाणी विच इहदियां बड़ियां उदाहरणां ने, दरियावां दे किनारियां ते पंछी रहिंदे ने, जदों रात पैंदी है चकवी दरिया दे खब्बे नू चली जांदी है, चकवा सज्जे नू चला जांदा है, एक दूजे नू पुकारदे ने, पर हैरानगी दी बात एक दूजे दी आवाज सुन के एक दूजे नू मिल जांदे ने, मिलाप हुंदा इन्हां दा दरिया विच उड्डनिया, खब्बा सज्जे नू चला जांदा सज्जा खब्बे नू।

0: सम्मान योग चवर तखत दे मालक परमेश्वर दा खिरदा स्वरूप सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान होए बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों वडभागी हो इलाही गुरबाणी दे कीर्तन नाल सतगुरु नानक देव बाबा जी महाराज उन्हां दी बख्शिश कृपालता ले रहे सी। आओ जितने को सोज धन गुरु ग्रंथ साहिब जी मेहर करके बख्शनगे गुरु बाबा जी दे पवित्र जीवन और गुरबाणी दी विचार आरंभ करिए। विचार आरंभन तो पहला कृपा करके एकाग्रता बख्शो, बच्चियां नूं भी चुप करा के कृपा करके एकाग्रता दा दान बख्शिया जे। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने शब्द सरवण किया है, बाबा मन मतवारो नाम रस पीवै, सहज रंग रच रहया, अहमिस बनी प्रेम लिव लागी, शब्द अनाहद गया। ए शब्द दी रहाओ दी तुक सी। पहलियां पंक्तियां सन, गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर धावै, कर करनी कस पाइए, पाठी भवन प्रेम का पोचा, इत रस अम्यो चुआइए। ते इस शब्द दे अखीर दी तुक सी कि गुरु नानक साहब एक जोगी नूं संबोधन कर रहे हैं। कहो नानक सुन भर थर जोगी, इहदा मतलब ए शब्द किसे जोगी नूं संबोधन करके उच्चारण किया, पर चेते रखना ए शब्द केवल उस समय तक उस जोगी दे जीवन तक सीमित नहीं सी। ए शब्द अज भी गुरु के सिखा नूं एक चेतावनी दिंदा है ते नाम रस नाल जुड़न की प्रेरणा दे रहा है। शब्द असां सुने, बाबा नानक जी नूं जोगी मिले है, इन्हें गल कीती है लिव दी, गल कीती है अनहद शब्द दी। ते जोगियां दे मत मुताबक उन्होंने प्याला भर के नशे का पेश किया, शराब का पेश किया। ते बाबा जी पुछदे ने ए की, कहन लगे एक वारी पी लईए ते परत के दिन चढ़े तक एदा नशा उतरदा नहीं, ते इन्नी टेक के समाधि लाई दिए कि शरीर नूं थकावट भी महसूस नहीं हुंदी। ते बाबा जी कहन लगे भलियो ए प्यार किवें कीता जे, ध्यान देना। कह लगे भांडे विच पानी पाया सी, पानी पा के विच गुड़ पाया, गुड़ दे विच किक्कर दे छक पाए ने, अमोवे दे फुल पाए ने। पहला एक कच्चा रस तैयार होया, परत के अग दी भट्ठी ते भांडे नूं रखिया, ते इहदे चो गिरदे आपां भांडे उपर होर बखल फिट कीता, उहदे विच नाली लाईए, ते भांडे उपर जिहड़ा बथल फिट किया होर भांडा फिट किया, ते उहदे चार चफेरे असीं मिट्टी का पोचा फेरिया, ते थल्लो अग बाली, ते जिहड़ा इहदा अरक निकलिया इहनूं असीं रस कहिंदे आ। एक वारी पी लईए ते रात भर इहदा नशा उतरदा नहीं। इशारा सी शराब वल। बाबा जी कहन लगे शराब का नशा नहीं, उह रस की होए जेड़ा शाम नूं पीता होवे ते सवेरे उतर जाए। ते कहन लगे मैं उस नाम रस दे प्याले नूं पी चुका हां, ते इहो जिहा आनंद अंदर बन गया है कि चेते रखो उहदा नशा, उहदा सरूर, उहदा रस कदी भी उतरदा नहीं। ते जोगियां ने पुछया ए रस किवें तैयार हुंदा है, ते बाबा जी कहन लगे जोगियो गुड़ कर ज्ञान परमेश्वर दे बख्शे हुए ज्ञान नू गुण बनाया ध्यान कर पावे ओदे नाम विच ध्यान जोड़ना मैं इनू अमवे दे फुल बनाया कर करनी कस पाईए ते उच्चे आचरण नू किकर दे सक बना दिता है पाठी भवन आ शरीर नू पठी बना दिता है इस मोह दी मोह नू मैं साड़न तुरिया वो पाठी भवन तुसी मिट्टी का पोचा देंदे हो प्रेम का पोचा ते एदे विचो शराब नहीं एक रस अमेओ चुवाईया एदे विचो अमृत दिया बूंदा डिगदिया एक रस अमेओ चुवाईया कह लगे फिर बाबा हे जोगी मन मत वारो मन मस्त हो गया नाम रस पीवे सहज रंग रस रोया एनस बनी प्रेम में मिलागी शब्द अनाहत गया एनस का अर्थ हुंदा दिन ते रात एवो जिहा सुरूर ओ विचार है कि मेरे अपने अंदर ही ओ शब्द सुनाई दे रहे ओ शब्द आप जी ने सरवण किया ते जे आप कह दईए भी ए कले जोगी वास्ते सी ते ध्यान रखो गुरु के सिखो बाबा नानक जी ने शब्द विच कले जोगी नू नहीं हर प्राणी मातर नू कह जिस नशे पिछे तू जीवन बर्बाद कर रहे है इस नशे ने ना लोक सवार नहीं ना परलोक सवार नहीं ते कई बारी कोई सज्जन कहिंदे ने कि गुरु ग्रंथ साहिब विच शराब दे मुतल्लक कुछ बचन कीते ने हां बाबा अमरदास जी एक बचन करदे ने कहिंदे ने मानस भरिया आणे मानस भरिया आए जित पीता मत दूर होए बरल पवे विच आए अपना पराया ना पछाणी खसमो धक्के खाए जिदे तीन नाल अपने पराए की पछाण नहीं ओहो जे बंदे नू तां रब की दरगाह विचों भी धक्के पैंदे हुण गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी भगत रविदास जी का एक शब्द हुंदा नादर जना मेरी जात बख्यात चमारन उस शब्द विच इक तोके कहिंदे दुनिया ने सब तो पवित्र गंगा नदी नू मन्निया हिंदुस्तान दे लोगां नू पर भगत रविदास कहन लगे जेकर गंगा दियां लहरां दे पानी दी भी शराब कोई कड लै ते रब दी बंदगी करन वाला कदी ओहदे वल झाकदा भी उहनां दा बचन है सुरसरी सललकृत बारनी रे के जेकर सुरसरी दा अर्थ है तू गंगा दियां लहरां दी शराब बना लै सलल दा अर्थ है लहर सुरसरी सललकृत बारनी रे पर नाल कह दिता संत जन करत नहीं पावेंगे सतगुरु गुरु साहिब जी ने ओ रस दिता जेड़ा रस नाम दा कदी उतरना नहीं खैर गुरु नानक साहिब महाराज जी दा पवित्र इतिहास आपां कल विचार कीती सी गुरु नानक बाबा जी ने सज्जन ठग तो सज्जन भाई बना दिता है अगे लोकां नू ठगदा सी अज एहो जिहा सज्जन बना दिता नाम दा व्यापारी बन गया गुरु नानक साहिब महाराज सज्जन तो बाद हर द्वार दी धरती ते पहुंचे ने इत्थे मेरे दाता जी ने कुछ एहो जिहा कौतक वरताए जेड़ी कई मुद्दतां तो उन्हां दी मनौत सी एक परंपरा बनी हुंदी सी ते पांडे ने मर्यादा बनाई सी ते गुरु नानक दे उस दलील ते नाम दी बरकत सामने कोई खलो ना सकिया हर द्वार पहुंचे ने अजे सूरज दी टिक्की निकल रही है ते लोग गंगा विच इशनान तय करदे ने ओ लोग तन नूं तां धो रहे ने पर मन उन्हां दा दसी पासी धामदा पिया तन धुपदा पिया पर मन धामदा है मन धुपदा नहीं मैं बेनती की धामदा दर से दौड़दा पे पिंडे ते पानी पै रहा है पर मन ते उस पानी का असर नहीं ते कुछ कूने पानी दियां बुकां भरिया ने ते सूरज वल पानी पै सकदे ने ते बाबा नानक जी कहिंदे ने मरदानिया तू खलो किनारे ते आ देख पानी पै सिंजदे ने चढ़दे नू आपां वी अपने घर दा कोई सोचिए बाबा नानक जी पानी विच प्रवेश कीता ते लेंदे नू पानी झटना शुरू कर दिता पानी सिंजन लगे ते जदों बाबा नानक जी इकले लेंदे नू पानी सिंजदे पए ने हुण इन्नी भीड़ सी कहन लगे देखो आ बंदा कौन है ए हिंदू है ते जे हिंदू है ते चढ़दे नू पानी छड़ के लेंदे नू पानी दे रहा है। ते पंडे कोल आए कह लगे भलिया तू पहली बारी इत्थे आए है? कह लगे हां। फिर किन्ने तेनू पता नहीं पानी चढ़दे नू दईदा लेंदे नू नहीं? सतगुरु बाबा जी कहिंदे ने चढ़दे नू क्यों? कह लगे कुछ तां सूरज नू पानी देंदे ने, कुछ अपने मर चुके पितरां नू पानी पै देंदे ने। बाबा जी कहन लगे पितर किन्नी कु दूर ने? उन्हां ने करोड़ां कोह दी गिनती कीती ते बाबा नानक जी फिर पानी झत्तन लग पै। ते उन्हां कहा हे बाबा असी तेरे सवाल दा उत्तर दे दिता, तुसी पुछया असी पानी किन्नू देने आ? असी सूरज ते पितरां नू पानी दे रहे आ ते तुसी पानी किधर दे रहे हो? बाबा नानक जी कहन लगे मेरी धरती है लेंदे नू, जमीन विच फसल बीजीए। ते कई वारी साडे वीर कहिंदे ने बाबा जी ने कहा मेरी करतारपुर जेड़ी खेती सुकदी पई है। नहीं प्यारे अजे करतारपुर शहर बद्दा भी नहीं सी, करतारपुर ते सब तो अखीर विच बज्जा। कहन लगे लेंदे नू मेरी धरती विच बीज पिया फसल सुक रही है, मैं चाहना वा पानी चढ़ चढ़ के उस फसल नू भरपूर कर दिया। सारे हस के कहन लगे देखो एनी अकल नहीं, आ गंगा विचों पानी निकल के तेरे पैरों विच फिर परत के रुड़ के वापस आंदा है, इन्ने को दूर पंजाब की धरती ते पानी पहुंचेगा? जा तेरी उस धरती ते जिथे तू फसल बीजी पानी अपड़ जाएगा? बाबा जी कहन लगे पंडा जी मैं ता अज पानी सिंजन आया, आ तुहानू किन्ना कु चिर हो गया पानी चढ़दे नू सिंजने आ? कह लगे ते ता हर साल ही लोकी सिंजदे ने, जदों कोई यात्री आए ते पानी सिंजदा है। साहब कहन लगे पंडित जी जे तुहाडा सिंजिया होया पानी करोड़ां को दूर पितरां तक ते सूरी तक पहुंच सकदा है, ओ साडी धरती ते सैकड़े कुआं तेरे कि साडा पानी उस धरती ते नहीं पहुंचेगा? जे तेरा सैकड़े कुआं दूर हजार करोड़ां कुआं दूर ते साडा सैकड़े कुआं दूर नहीं जांदा? लोग हैरान हो गए, कहन लगे अज तक किसी ने सोचे ही नहीं, वाकई जेकर पानी पितरां तक पहुंच जांदा है ते ए पानी इस धरती ते नहीं पहुंच सकदा? ते सारे कोल आ गए, कहन लगे बाबा गल तां तेरी बिल्कुल दुरुस्त है, पानी पितरां तक पहुंचदा नहीं। ते चेते रखियो पितरां दा असी अर्थ करने आ जेड़े मर चुके प्राणी ने, जेड़े बजुर्ग चढ़ाई कर चुके ने। पर अज बाबा जी ने एक किवाड़ खोलिया उन्हां लोगां दा जेड़े जिउंदे जी तां बापू दे मुंह विच कुट पानी दा नहीं पाया, जिन्हां ने जिउंदे जी मां बाप नूं रोटी नहीं कदी अदब नाल दित्ती ते मरन तो बाद गंगा विच खलो के चढ़दे नूं पानी सट के कहिंदे ने पितरां नूं पानी देने आ, गुरु ग्रंथ साहिब दी विचारधारा ने उन्हां लोकां नूं झंझोड़िया। पहली गल इत्थे दो गल्लां ने, एक तीर्थ ते नहाउण वाले ते दूजे पितरां नूं पूजण वाले। आपां भाई साहिब भाई गुरदास जी उन्हां तों पुछिए भी जेड़े लोक जिउंदे जी मां बाप दा अदब नहीं करदे ते मरण तो बाद पितरां नूं पानी देंदे ने, भाई गुरदास जी तुहाडे कोल गुरु नानक जी दे घर दी विचारधारा दसो, उन्हां बारे तुहाडा की ख्याल? भाई गुरदास जी दी वार नंबर 37 ते पौड़ी नंबर 12 ते 13 ध्यान रखना। भाई गुरदास जी कहिंदे ने ऐ मनुख ए माया किन्नी प्रभावशाली है, जिदन तेरा जन्म होया रब दा भाणा उदन वापरिया। वैसे असी भाणा अखर जेड़ा है ना इनू दुखांत नाल जोड़ दिता है, ध्यान देना। असी कई बारी भाणे अखर नूं दुखांत नाल जोड़ने आ, कोई काम बिगड़ जाए, कोई मर जाए, किसे नूं सट लग जाए, असी कहिंदे आ भाणा वापरिया है। मौत होवे ते कहिंदे आ भाणा वापरिया है, ते जदों जन्म होवे ते कोई नहीं जे कहिंदा इन्हां दे घर रब दा भाणा वापरिया है। असल भी जिदन बच्चा जमदा उदन भी भाणा ही वापरदा है। आ इक शब्द हुंदा है आनंद साहिब विच, जां तिस भाणा तां जमिया परिवार भला पाया। कहिंदे ने जां तिस भाणा तां जमिया, जिदन तेनू रब जी पाया उदन जीव दा जन्म होया। ध्यान रखना कुछ अखर ऐसे ने, जिवें हुण एक अखर है जलूस, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਲੂਸ ਅੱਖਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਲੋ ਤੋਂ ਜਲੂਸ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਜਲੂਸ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ ਬਕਣਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਕਣਾ ਅੱਖਰ ਬਕਵਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਕਣਾ ਅੱਖਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸ਼ੋਂ ਦੇਵਾ ਜੋਰ ਚਰਨ ਗਹੂੰ, ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਬਕੋ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਾਂ, ਕੀ ਬੋਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਕੜਾਂ। ਚਰਨ ਗਹੂੰ ਬਕੂ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ, ਦੀਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਕੋਰ ਅਕੋਰ ਦਰ ਤੇ ਭੇਟਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਜੰਮਿਆ ਸੋ ਉਦਨ ਮਾਇਆ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ, ਵਿਚੋਂ ਗਰਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਖਤਮ ਵਿਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਭਲਿਆ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਰਲੇ ਜਿਹਦੀ ਲਿਵ ਜੁੜਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਜੰਮਿਆ ਸੈ ਉਦਨ ਸਾਈ ਵਿਸਰਿਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਦਨ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨੀ ਟੁੱਕਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮਣ ਕਾਮਣੇ ਆਰੀਏ, ਕੀਤੋ ਕਾਮਣ ਕੰਤ ਪਿਆਰੇ, ਨੀ ਤੂਣੇ ਹਾਰੀਏ ਇਸਤਰੀਏ। ਤੂੰ ਕਾਮਣ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਪਤੀ ਤੇ ਟੂਣਾ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੰਮੇ ਸਾਈ ਵਿਸਰਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਗਾਇਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਰੇ, ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ
1: ਸਕਣਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪੁੱਜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਮੀ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਓ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸੰਕਟ ਸਰਵਾਨ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਠ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਹਿਤ ਪਾਠੀ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬੜੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਬਣਾਵੇ ਸੱਚੀ ਕਥਾ ਦੇ ਜਾਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਮ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਸਾਡੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਮ ਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੋਂ
2: ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ

अकाल मूरत अजूनी सैतम गुरप्रसाद जप आदि सच योगाद सच है सच नानक खुशी पी सच मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी मैं तुझे आ गया अरदास मैं पूर थाऊ नाही जिस पह करूं बेनंती मेरा दुख सुख तुझगी पास ना हो जति सती नहीं पड़या

ते निरभव हो जाए, निर्वैर हो जाए, तू समय तो रहत हो जाए, अकाल मूर्त तू बन जाए, कह लगे जूना तू रहत हो जाए, ते सुते सिद्ध प्रकाश मान तू हो जाए, पर के एक तेनू ता मिलेगा जे गुर प्रसाद लेगा। सिर मैं ट्यूक मात्र पंची झात पाड़ीए, बाटा तैयार होन लगा, और तैयार होन लगी है, ते पहली बाणी जप सह पड़ी, एक ओंकार तो लैके नानको सीपी सच तक जप कर दिया। अगे खजूर ने पहली पौड़ी शुरू की थी, सच जानो सिखी दा पहला लैसन की हुक्म मनना है। जेड़ा बंदा तर्क करदा है उन वजह तक पता ही नहीं कि सिखी दा पहला पाठ की। खजूर ने शब्द बरते, कहिंदे ने मैं चाहना तू सचियार हो जाए, ते गुरु गोबिंद सिंह चाहते ने मैं सचियार नू शब्द खालसा दे के जावा। सचियार ते खालसा अर्थ एक ही ने, जिन्हों गुरु नानक सचियार बनाना चाहते ने ओनू गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा बनाया। दोनों ने एक गल कही, सचियार वो बनेगा जो गुरु का हुक्म मनेगा। गल हुक्म तो शुरू गई, पहली पौड़ी शुरू की थी, ते गल नन्ने तो पाई। ए नहीं कहा कि मैं पिछली मनौत नू मनना वा, कह लगे सचियार बन नहीं ते तीर्थां ते ना भटकदा रही, सचियार बन नहीं ते पखंडियां वालियां अखां ना बंद करी, सचियार बन नहीं केवल दौलत इकट्ठी ना करी जाई, जे सचियार बन नहीं केवल चलाकियां चुस्तियां ना करी, सच जानी सचियार वो बनेगा जेड़ा हुक्म ते रजा भी जिंदगी बतीत करेगा। कभी सवैया पढ़ो के तीर्थ दान दया तब संजम एक बिना न एक पछाण, खालसा होवे जेड़ा इस पंक्ति ते अमल करे। ते बाबे नानक दी पहली पौड़ी पढ़ो, इसे पंक्ति दी व्याख्या कर दी, सोचे सोच ना होवई, जे सोची लखवार चुपै चुप ना होवई, जे लाए रहा निवतार भुखिया भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरिया भार सह सियाणपा लख हो ता एक ना चलै नाल। खालसा किवें बनेगा बई, किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटै पाल, गुरु ते रब दरमियान तेरी जेड़ी कंध बनी है किवें टुटे। कह लगे हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया, नाल पहली गल हुक्म दिए। मैं कहना सिख नु ते पुछने नहीं सी चाहिदा अमृत क्यों छकना है, इन इको गल कहनी चाहिदी सी मेरे गुरु ने पहला पाठ ही मेनू हुक्म ते रजा दा पढ़ाया। हुक्म है ते मैं मनना है। देखो जदो बाटे विच हुक्म रजाई दे शब्द पए, उस तो अगे गुरु जी ने कहा अमृत लैण वालिया, अमृत वेले रब दे चरणा विच पेटावां दित्तियां जांदियां ने। एक काम करी, अमृत छकन तो बाद अमृत वेला सच नौ वडियाई विचार, बाणी पढ़दिया क्या नाम नु सुनी, नाम सुनने वाले खेड़े विच रहिंदे ने के सुनिया दुख पाप का नाश, नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नाश। कहन लगे कला सुन तक सीमित ना रही, मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए। केड़े मन लेंदे ने ਉਹ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੇਂ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ, ਮਤਾ ਮਾਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕੇਵਲ ਜਪ ਤਪ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਓ, ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੀ ਜਿੱਥੇ ਜਪ ਤਪ ਵਾਲੇ ਅਸੰਖਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਿੰਦਕ ਵੀ ਅਸੰਖਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀ। ਜਪ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸੋ ਦਰ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਪ ਪੜਿਆ ਅਖੀਰ ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੰਜ ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੇ, ਪਰ ਬੰਨਾ ਤੂੰ ਸੱਚ ਖੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਦੇ ਤੱਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਖੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਖੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਘੜੀ ਜਾਏ ਉਹ ਕਰਮ ਖੰਡ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਖੰਡ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਉਹ ਸੱਚ ਖੰਡ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਪ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਲੈ ਆਏ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ। ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਤਰਤੀਬ ਦਿਓ ਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਏ ਜਪ ਤੋਂ, ਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ ਏ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਪ ਤੇ

पुरख गुरु अर्जुन पिखो नयन, अब राखो दास पाट की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाखश फारे कर आज, फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभु जी, छीनत वस्त्र दीन बहु साज, सुदामा अपदा ते राखिया, गणका पड़त पूरे ते काज, श्री सतगुर सो प्रसन्न कल युग होए,

नाही अमृत छाड़ बिखे बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत धारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई।

लोभ मोह वस करन शरण जाचक प्रतपालन आत्म रस संग रहन कहन अमृत कल ढालन।

गुर जगत फिरन से अंगरो राज जोग लहना करे अमे दिष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसे दुख संसारे खोवे गुर नवनिद दरियाओ जन्म हम कालख धोवे सुकहु टल गुर सेविए एहन सहज सुभाए

एक नहीं सैकड़े। मैं जिस जिस शहर विच गया सिंह सभावां दे जे प्रधान विवेक्षण उन्हां दे सिकत्तर विवेक्षण इंज हराई दा कौम नूं इंज मारो इंज करो इंज करो ते विवेक्षणा दे मुखी भी दो विवेक्षण ते खिमा करनी एक विवेक्षण दे नाल इन्ना शक्तिशाली राज भ्रष्ट हो जांदा है ते जिथे कदम कदम ते विवेक्षण बैठे होण तुसी भुलना ना इत्थे भी बथेरे बैठे होणगे जरूर बैठे होणगे इस तरह के लाजमी बैठे होणगे क्योंकि मैं घूम फिर के जो आया मैं देख के जो आया इन्हां नूं बड़े नेड़ियों जो देखिया मैं बहुत जो है करीबों देखिया बहुत नेड़ियों देखिया। रावण नूं दुख होया बड़ा भी तू मेरा विरा तू मेरा साथ दे तू मेरे राज तो वाकफ मेरे स्वभाव तो वाकफ मेरे आचरण तो वाकफ आचरण का इतना पाकीज बंदा कि उन्हें सीता नूं अशोक वाटिका च रखे अपने महलां च नहीं रखे इतिहास गवाह उसकी पवित्रता का सबूत मिल गया सी अगन परीक्षा के नाल भी तां भी गल स्पष्ट हो गई कि रावण बेदाग है रावण निर्दोष लेकिन फिर वह दुष्ट क्यों हार गया। क्षमा करनी जब इस तरह की कुछ साड़ी कौम हारी तो नहीं मैं इस नहीं कहता लेकिन हार जगत नूं प्रतीत होई कि देश के दे तमाम अखबार कलम के धनी जबान के धनी क्षमा करनी साडे मुखालफ ही लिखण लग पे। मैनू तो एक अखबार भी ऐसा नहीं मिलिया जो किधरे हक च गल करता हो सारे देश विच मैं भ्रमण किया। उपमा ते जेतू दी होवेगी और गजब दी गल विवेक्षण भी टीवी ते बोलदा जे सकता सकते को मारे ता मन रोस ना होई। शर्म दी गल लजानी चाहिए तेनू 40-50 मासूम बंदे बंदूकां वाले टैंक चढ़ा के लह जाओ ते गुरु नानक दी पंक्ति क्या पूरी उतर दी कि जे सकता सकते को मारे तामन रोस ना होई ते पंक्तियां तू इसे वास्ते कंठ कीतियां सन कि इत्थे ही सुनानियां ने और इंज कौम नूं इन्हां पंक्तियां दे नाल जो है मार करनी है। क्षमा करनी घर का भेदी लंका डाल और घर का भेदी जद भरा होवे राजदार होवे जानन वाला होवे ते दुख बड़ा होंदा। मैनू गाथा चेते आई मनसूर नूं जद सूली ते चाड़न लगे ने ते वक्त दे बादशाह ने कह दिता इन्हों सूली चालन तो पहले सारिया ने एक एक पत्थर मारना है ते अगों खड़ा सी शिवली भीड़ दे सब तो अगे खड़ा ते शिवली जिगरी दोस्त भ्रामा वाला रिश्ता मनसूर दे नाल ते शिवली कंब गया जे मैं पत्थर ना मारिया ते हो सकदा मैनू भी सूली ते टंग देन गल ते नहीं और की है ते जे मैं पत्थर मारिया ते मनसूर बेदाग है निर्दोष है पवित्र आत्मा है खुदा शनास है खुदा प्रस्त है। सोची पिया इतने च बादशाह ने हुक्म कर दिता कि मारो इसनों एक एक पत्थर पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। मनसूर हसदा रहा शिवली दे कोल एक फुल सी उन्हें सोचिया चलो हुण मैं ये मारा अगलियां नूं पता तो चल जाए मैं कुछ मारिया उन्हें खिच के फुल मारिया मत्थे ते लगया चीख निकल गई मनसूर दी। शिवली कोल गया ते कहिंदा मित्रा लोकां ने पत्थर मारे मुस्कुरांदा रहा मैं तेनू फुल मारिया तू रो पिया। मनसूर ने कहा तू फुल भेट नहीं कीता मारिया जिन्हां ने मैनू पत्थर मारे मूड सन नादान सन तू मैनू फुल मारिया तू ते ज्ञानी सी तू ते सियाणा सी तू ते आलम सी तेनू ते मेरा पता सी मेरे इतिहास का पता सी मेरी जिंदगी का पता सी पर तू भी मारिया। रो पिया शिवली पैरां ते गिरिया कहिंदा माफ करी मित्रा पत्थर मारन की हिम्मत नहीं हुई फुल मैं मारे पर मैं मारिया।

0: पूर्ण निर्मल कर्म की है, श्रेष्ठ धर्म की है। सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म, हरिदा नाम जप यही निर्मल कर्म है, हरिदा नाम जप यही श्रेष्ठ धर्म है, और कोई निर्मल कर्म नहीं और कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं। हर को नाम जप, ये दो सवालों का जवाब है। जप कर बस यही श्रेष्ठ धर्म है, यही निर्मल कर्म है, इस तो वड्डा और कोई निर्मल कर्म नहीं, तो जप कर। इस तो वड्डा और कोई धर्म नहीं तो जप कर। ते खिमा करनी, जप ने शुद्ध करना है, जप ने पवित्र करना है, जप ने निर्मल करना है, जप ने श्रेष्ठ बनाना है। ते जप सिख दे चो निकल जाए, सिखे निकल जाती है, सिख ते खड़ा ही जपते है। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पहली बाणी जप है, और समुचे सिख जगत नु गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जप नाल जोड़न की कोशिश की। जप नाल जुड़ोगे खालस होवोगे, शुद्ध होवोगे, जप नाल जुड़ोगे बहादुर होवोगे, सुरजीत होवोगे, जीवदे जागदे होवोगे। मूल गल जेड़ी है ओ जप है। तो साहब इत्थे कहिंदे ने पाप की है, पाप दी हुण वजाहत है दो लफ्जां विच करनी होवे, जिस बोल तो, जिस कर्म तो, जिस किरदार तो, जिस विचार तो किसी नूं चोट पहुंचे, पाप है। कोई लिख के पाप करदा है, कोई बोल के पाप करदा है, कोई करके पाप करदा है। पाप ते कई तरह ने, चोट किसी नूं पहुंचानी है, लिख के चोट पहुंचाओ। इस देश विच बड़ा भयंकर पाप है। मैं जिन्हें अखबारां दे एडिटर देखे, महापापी देखे, जो कुछ लिखते पैसे, जिन्ना लिखते पैसे, तो फिर पापी ये देखे सूचना प्रसार मंत्री जो टीवी दे उते जो बुलाई जाते हैं, बुलाई जाते चोट बोल के चोट पहुंचाई जानी है, इन्नी चोट पहुंचानी है, बोल के चोट पहुंचानी, लिख के चोट पहुंचानी, या किसी कर्म नाल चोट पहुंचानी, ये जड़ा चोट पहुंचाना है ये पाप है। महाराज कहिंदे ने राम दे दासां दे सरोवर, रामदास सरोवर दे इशनान कीता ते किसे नूं चोट पहुंचाण वाली है जिहड़ी पाप बिरती सी उह धुल गई, हुण चोट नहीं पहुंचांदे, निर्मल हो गए, पवित्र हो गए। और हकीकत है सिख ने अपना हक मंगे है, किसे दा हक खोया नहीं, अज तक नहीं होया। इह ते जप करदा है, इह ते सतगुरां नाल जुड़े होया है, पर इतनी गल स्पष्ट है कि जद कोई इसका हक खोवे तो मुरदा नहीं फिर जीवदा जागदा है। एदियां कलियां भी मलण दियां लोड़ ने, इहदे अंदर उंजी खून रूह कर रहे हैं, इहदे अंदर उंज भी जज्बा मौजूद है, इसके अंदर उंज ही जो है अग्नि मौजूद है। तो साहब कहने राम दे दासां दे सरोवर का इशनान किया, होया कि सारे पाप धुल गए, सारे गुनाह धुल गए। हां जी, इशनान करके निर्मल हो गए, पवित्र हो गए। हां जी, पर ये बख्शिश गुरु ने दान दे रूप च दिती है। असी कोई मुल दिता है सरोवर दा, इस हरि मंदिर दा कोई मुल दिता है, कोई मुल चुकाया। सतगुरु ने इतना वड्डा तीर्थ, इतना वड्डा सत्संग दा गढ़, इतना वड्डा पवित्रता दा सोमा सानू दान दे च दिता है, असी इसदे इवजान च की दिता है, सानू दान दे च दिता है। इतना सिरमौर केंद्र बख्शिश भरिया ये पवित्र अस्थान, और बख्शिश भरिया ये निर्मल जल, ये सारी दात सानू उसने दान दे रूप च दिती है। असी इस ढंग नाल सारे जो है भिखारी हाँ। तो साहब कहते हैं पूरे गुरुदेव ने ये दान किया, ये बख्शिश की। हाँ जी, हर प्रकार की जिहड़ी कुशलता है, हर प्रकार का जो मंगल है, सुख है, कल्याण है, ओदी प्राप्ति हुई मन दे च, उसकी धारणा हुई। हाँ जी, गुरु शब्द की विचार करदिया करदिया हर प्रकार दे थोक की प्राप्ति हुई। शरीरक सिद्धि, मानसिक सिद्धि, अध्यात्मक सिद्धि, भाव शरीरक सुख, मानसिक सुख, ते अध्यात्मक सुख, सारे सुखां की प्राप्ति हुई गुरु दे शब्द दे विचार करदिया करदिया। हां जी, साधुआं दी संगत करदिया करदिया, गुरु दी संगत करदिया करदिया, जितनी भी पाप दी मैल से सारी दी सारी उतर गई, लै गई। हां जी, और इस तरीके दे नाल जद पवित्र होए ते अकाल पुरख अंग संग हो गया, साथी बन गया, मददगार बन गया। हां जी, गुरु दी बख्शिश का सदका, रहमत का सदका, नाम का जप कीता, प्रभु दी बाणी पढ़ी। हां जी, ओ जो अनादि अकाल पुरख है, परिपूर्ण परमात्मा है, फिर उसकी प्राप्ति हुई, ओ सानू मिलिया। इत्थे तक शब्द दे विचार शब्द दे भाव अर्थ और अखरी अर्थ तुच्छ बुद्धि अनुसार थोड़े सामने जो है मैं रखे ने हुण मैं 15-20 मिनट थोड़े होर लेने ने उस तों बाद श्री अखंड पाठ साहब का भोग पवेगा प्रोफेसर दर्शन सिंह ने ते भाई साहब भाई सुरेंद्र सिंह ने आप नूं कीर्तन दीआं धुनां दे नाल निहाल करना है ते अगला प्रोग्राम प्रबंधक साहिबान सिंह साहिबान थोड़े सामने जो है रखणगे 15-20 मिनट मैं थोड़े होर लवां। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने पावन पवित्र बाणी विच फरमान कीता है कि मनुख दा मन ते तन ए दो वजूद ने अलग अलग असी दो रूप रखते हैं एक नहीं। कई दफा साडा तन कुछ होर कहिंदा है साडा मन कुछ होर कहिंदा है जबान बाणी पढ़ रही हुंदी है मन नहीं पढ़ता। कई दफा मन पढ़ रहा हुंदा है जबान खामोश हुंदी है। तन ते मन दो अलग अलग वजूद ने ये दो अलग अलग दुनिया ने साडियां ते जद दुनिया अलग अलग ने हर मनुख दियां तां इन्हां दो दुनिया दे ते राज प्रबंध भी वख वख ने। शरीर दी दुनिया दा राज प्रबंध वख ते मानसिक मंडल दा राज प्रबंध वख। कहिंदे ने मन विच उदों तब्दीली आ जांदी है क्रांति आ जांदी है जद राज प्रबंध बदल जांदा है। किसी भी देश दे पलटा उदों आंदा है जद राज प्रबंध बदलता है पलटता है इहदे नाल तब्दीली आ जांदी है क्रांति आ जांदी है। ते सारी दुनिया विच वख वख तजर्बे कीते गए किधरे शख्सी हुकूमत किधरे सोशलिज्म कम्युनिज्म किधरे डेमोक्रेसी जमहूरी प्रजातंत्र ये वख वख तजर्बे कीते गए ताकि बंदे नू बैरूनी सुख मिले बंदे नू अंदरूनी चैन मिले ये भी वख वख तजर्बे कीते गए। हर एक युग देच अपने अपने ढंग नाल तजर्बे कीते गए जैसे सतगुरु कहिंदे ने कि सत युग सत त्रेता जगे द्वापर पूजा चार तीनों युग तीनों दड़े कल केवल नाम आधार। मन नूं सुकून मिले मन नूं चैन मिले किस वक्त पूजा पाठ दी गल तीर्थां दे रटन दी गल हवन यज्ञ दी गल संजम ते जत दी गल ए वख वख तौर तरीके अपनाए गए कि बंदे दे मन नूं सुख मिले बंदे दे तन नूं ते इहदियां बैरूनी लोड़ां जिहड़ियां ने सहूलियत नाल सौखे ढंग नाल इस नूं प्राप्त होवन ते बाहरों भी कुछ यतन कीते गए। एक यतन ओ जो वैद लोगां ने कीता एक यतन ओ जो राजनीतिक लोगां ने कीता कि बंदा शरीरक तल ते सुखी रह सके शरीर दे कोई बीमारियां ना आवन। इस देश दे पुराना तरीका आयुर्वेदिक सी ओ तब्दील होया यूनानी इलाज आया भी देखिया गया आयुर्वेदिक ढंग नाल इलाज करदिया सारियां बीमारियां नहीं जांदियां कुछ बीमारियां रह जांदियां ने तां फिर यूनानी तौर तरीका प्रचलित होया। यूनानी तौर तरीके तो बाद फिर अंग्रेजी इलाज आया एलोपैथी आई ते फिर देखा गया यह भी कई रोगां दे उत्ते कारगर नहीं साबित होंदा होम्योपैथी आई अजकल नेचरपैथी का बड़ा जोर है। ये सारे तजर्बे वख वख सैने लोगां ने वैद लोगां ने कीते कि बंदे दे शरीर दे चों किसे तरीके नाल रोग कढ़िए ते बंदा शरीरक तल ते स्वस्थ हो सके बंदे दीआं आर्थिक लोड़ां ते बंदे दा समाजिक ढांचा सुखी रह सके वख वख तौर तरीकियां नाल राजनीतिक लोगां ने प्रबंध बनाए कानून बनाए विधान बनाए। पिछले दिनी एक बहुत वड्डे सिख जगत दे मुखी बंदे ने कलकत्ते विच किधरे कहा क्योंकि कलकत्ते दे सिंघां ने मैनू इस तरह आख्या बई ओह कहिंदा है कि रहतनामा नहीं सुनाना चाहिए सिर्फ बाणी पढ़ो गुरुआं ने बाणी उच्चारण की रहतनामे ते बंदियां दे ने लिहाजा रहतनामे नाल साडा की मतलब गल इतनी सी कि रहतनामे सिख जगत तों कढ दईए ते रहत वैत आपे निकल गई अमृत की मर्यादा आपे निकल गई और उन्हें कलकत्ते दे इस विषय ते बहुत जोर लाया ते मैनू उत्थों दे चीदा चीदा सज्जणा ने जो काफी तादाद दे चिते हुण भी आए ने आखिया भी इस संबंध च तुसी कुछ कहो। मैनू उत्थे कहना पिया हर संपर्दा दे अपने सिद्धांतिक ग्रंथ ने ते विधानक ग्रंथ ने। कुरान इस्लाम दा सिद्धांतिक ग्रंथ है हदीसा इस्लाम दिया वैधानक ग्रंथ ने सिद्धांत तक पहुंचना किवें है विधान है। सिद्धांत एक मार्ग एक रस्ता बन गया है पर रस्ते दे उते चलन दे रूल आकर ट्रैफिक रूल भी ते होंदे ने। रस्ता गुरु ग्रंथ साहब एक रस्ता है राम एक रास्ता है, वेद एक रास्ता है, गीता एक रास्ता है, पर आखिर रस्ते देते चलने के नियम भी तो होंगे, ट्रैफिक रूल भी तो होंगे। रस्ता कोई होर बनाते हैं, सड़क कोई होर बनाते हैं, ठेकेदार बनाते हैं, PWD का महकमा बना है, तो ट्रैफिक रूल खेमा करनी ट्रैफिक का महकमा बना है, यातायात का महकमा बना है, और दूजे महकमे का काम वह ट्रैफिक रूल बना है। सड़क बना लेना ही सिर्फ बहुत वड्डी गल नहीं, सड़क के उत्ते चलण के रूल भी बनाने पैणगे, नियम भी बनाने पैणगे। अमेरिका दे या अमेरिका का जिथे जिथे जो है ट्रैफिक रूल का प्रभाव है, उत्थे लोकी सज्जे पासे चलते हैं, बाकी देशों च लोकी खब्बे पासे चलते हैं, समुचे अरब दे और यूरोप के कई देशों दे, अमेरिका दे, कनेडा दे लोकी सज्जे पासे चलते हैं, कारां मोटर सज्जे पासे चलदियां, इंग्लैंड दे एशिया के बहुत सारे देशों दे भारत दे खब्बे पासे चलते हैं, रूल है। तो हुण कोई आखे मैं ट्रैफिक रूल नहीं मनता, मेरी मर्जी, मैं सज्जे चला, मैं खब्बे चला। बस का ड्राइवर आखे मैं ट्रैफिक नियम की पालना नहीं करनी, मैं तो इन्नी पालना करनी, चलना सड़क से, उजाड़ च नहीं चलांगा, कच्चे च नहीं चलांगा, जिथे सड़क नहीं उथे नहीं चलांगा, चलांगा मैं सड़क से, पर मैं सड़क के नियम की पालना नहीं करनी, मैं ट्रैफिक रूल की पालना नहीं करनी। तो खिमा करनी ड्राइवर मुसाफरां नूं मंजिले मकसूद ते पहुंचाएगा, इहदा अपना भी भोग पै जाएगा, तो मुसाफरां दा भी रस्ते च पै जाना है। ट्रैफिक नियम की पालना करनी पैंदी है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज एक मार्ग ने, इस मार्ग दे उत्ते असी किस तरह चलना है, रहतनामे साडा असूल ने, ट्रैफिक जो है रूल ने, उहदे मुताबिक असी चलना है इस मार्ग ते। इसे तरीके नाल हदीसा विधानक ग्रंथ ने, वेद सिद्धांतिक ग्रंथ ने हिंदू धर्म दे, पर मनुस्मृति विधानक ग्रंथ है, विधान है, रूल ने। ते उन्हें बुलंद बांग के रहतनामिया की लोड़ है, रहतनामिया की लोड़ है। तो मैं आख्या हूं किधरे मुलाकात नहीं हो तो उन्होंने कह दिया, तू हम सारे देश च रोला पा, ट्रैफिक रूल की लोड़ है, सिर्फ सड़क बनानिया चाहिए, ट्रैफिक रूल की लोड़ है, नहीं, सड़क भी बनानी पैंदी है, ट्रैफिक रूल भी बनाने पैंदे, मार्ग भी बनाना पैंदा है, मार्ग के चलण के नियम भी बनाने पैंदे ने। इस वास्ते हर जो है संपर्दा दे अपने सिद्धांतिक ग्रंथ ने, अपने विधानक ग्रंथ ने, उहदे रूल ने, उहदे कुछ असूल ने, उसके मुताबिक जो है चलना हुंदा है, और उस मुताबिक उसकी जो है पालना करनी हुंदी है। तो मैं अर्ज करा कुछ बार दे राजनीतिक ढांचे इस तरह बदलते रहे कि बंदे नूं आर्थिक समाजिक तौर पर संतुष्टि होवे, सुकून मिले, ते इहदे विच कोई बाधा ना खड़ी होवे, राजनीतिक लोगों ने नियम बनाए, ते वख वख ए राजनीतिक दुनिया विच पलटा आउंदा रहा। इस तरह जिमें वैदिक दुनिया विच पलटा आया, पहले आयुर्वेदिक, फिर यूनानी इलाज, फिर एलोपैथी, फिर होम्योपैथी, फिर नेचरपैथी, ए वख वख सिलसिला चलिया। इस तरह किसी वक्त शक्ति हुकूमत किंगडम, फिर सोशलिज्म का नारा लगया, कम्युनिज्म आया, फिर ए प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, जमहूरियत, ए वक वक तजर्बे किए गए। लेकिन खिमा करने आयुर्वेदिक दे होंदे आया भी कुछ रोग ऐसे सन जिन्हां रोगां दे च लोकी ग्रसे रहिंदे सन, ते रोग दूर ना हो सकया। होम्योपैथी, नेचरपैथी, एलोपैथी, यूनानी तिब दे होंदे आया भी रोग मनुख दी दुनिया दे च रहे, पूर्ण तौर पर दूर ना होए। हुण तो मैं देखदा जितनी देर दे च कोई नवी दवाई बाजार दे च आउंदी है, उतनी देर दे च कोई नवा रोग भी आ जांदा है। मेडिकल स्टोर दवाइयां नाल भरे पैण, बंदियां दे शरीर बीमारियां नाल भरे पैण। हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। इकबाल कहिंदा है, सियासत नालों धर्म नूं अड कर दो ते सियासत की रह जाती है, चंगेज खान दा अखाड़ा, हलाकू दी महफिल, हिटलर दा दीवान, बस यही कुछ रह जाता है और कुछ नहीं रह जाता। अगर दीन नूं कढ दो, अगर धर्म नूं कढ दो सियासत दे चों, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। साडे देश दे कुछ राजे भी पूजे गए, राजिया नूं भगवान आख्या गया, केड़े राजे, राजा राम, राजा कृष्ण, संत महापुरुष, बड़ी वड्डी इन्हां दी पूजा होई। ते मैं अर्ज करां राजे करके नहीं, ये राजे सन पर नालक धार्मिक सन, राजे तो इतने बेशतर हुए ने, कौन पूजता है, कौन उन्होंने भगवान आखदा है, कौन उन्होंने मत्था टेकदा है। तो मैं अर्ज करा कोई बहुत वड्डे राजे भी नहीं सन, एक अयोध्या का राजा है। तो अयोध्या की अज आबादी भी जी कोई 90,000 तो ज्यादा नहीं है। तो मैं समझदा श्री राम के जमाने से 10-15,000 की आबादी का कस्बा होना है, शहर होना है। 15,000 की आबादी बहुत आती सी जी, बहुत वड्डा शहर है क्योंकि 15,000 बंदे रहते हैं, चलो 20,000 मान लेंगे। आले दुआले 10-15 पिंड सन, बस इतना ही राजपाट से उन्होंने, सारा देश पूजता पे। दूसरे द्वापर युग के राजा ने द्वारका दे श्री कृष्ण, तो द्वारका अज भी 60-70,000 की आबादी का शहर है, इस तो वड्डा नहीं है। आले दुआले 15-20 कस्बे होर, इतना ही राजपाट से श्री कृष्ण का द्वारका दे राजा, पूजा की थी सारे देश ने, राजे करके पूजा की थी। जे राजे करके पूजा है तो कृष्ण ते राम नालों होर वड्डे वड्डे राजे मौजूद सन, इतनी मैरज करते हैं, जिन्हों का राजपाठ श्री राम नालों श्री कृष्ण नालों बहुत ज्यादा से नहीं पूजा हुई। इन्हों की क्यों हुई, ये सियासतदान होने के नाल नाल धार्मिक सन, बस इतनी गल। इन्होंने धर्म ते नीति नूं इकट्ठा किया होया, एक विशिष्ट का चेला है, एक संदीपन का चेला है। श्री कृष्ण संदीपन दे चेले ने और श्री राम विशिष्ट दे चेले ने, दोवें धार्मिक दुनिया के संपन्न ने, निपुण ने, ते अपनी राजनीति नूं धर्म के अनुसार चलांदे ने। दिल शिकनी ना होवे, किसी का हक ना मारिया जाए, किसी की समाजिक तौर पर जो है हक तलफी ना होवे, किसी की आर्थिक तौर पर हक तलफी ना होवे। जद इन्होंने अपने राज प्रबंध के नाल धर्म नूं जोड़िया ते धर्म फैलन लग पिया, बहुत लोगों ने भगवान जान के पूजा की थी। और स्पष्ट है कि धर्म तो बिना राजनीति पवित्र नहीं आती, ते राजनीति तो बिना धर्म चलता नहीं। राज बिना ने धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले, ते बिल्कुल स्पष्ट है, गल सही है। हुण पूजदा है सारा देश, ते जिहड़े पूजदे ने कहिंदे जी धर्म ते सियासत नूं अड अड करो, ते पहले ते राम दे नाल राजा शब्द अड करो, संत राम आखो, राजा राम क्यों कहते हो, राजा शब्द हटाओ, दे भगवान राजा राम, भगवान राजा राम कही जाते हो, राजा राम कही जाते हो, पूजी जाते हो। राज्यां दी ते असी पूजा नहीं करते, राजनीतिकां दी ते असी पूजा नहीं करते, राजिया नूं ते असी मत्था नहीं टेकते, राजिया नूं ते कोई सजदा नहीं करता। अंदर भाव है ये वो राजा है जो धार्मिक है, ये वो राजा है जो संत है, ये वो राजा है जो विशिष्टता चेला है। और इसने अपनी राजनीति नूं धर्म नाल जोड़िया, सारी दुनिया ने उहदे कदमां ते सजदा कीता, सारे देश ने। फिर ने महाराजा कृष्ण, द्वारका दे राजा कृष्ण, द्वारकाधीश उन्हां दा नां है, द्वारका दे राजा, द्वारकाधीश आख्या जांदा है। मथुरा विच बहुत वड्डा मंदिर है, उस मंदिर दा नां भी है द्वारकाधीश, और द्वारका विच बहुत वड्डा मंदिर है उहदा नां भी है द्वारकाधीश, द्वारका दे मालक, द्वारका दे राजा। ते द्वारका दे राजे होण दे नाते ते पूजा नहीं है, ओ राजा बाद विच है, संत पहले। ते सारे देश ने पूजा की थी, ते पूजन वाले कहिंदे पए ने ऐ सिंगो धर्म नालों सियासत नूं अड करो, ते मेरा इस स्टेज तो इन्हां नूं जवाब है, श्री कृष्ण नूं राजा कहना छड़ दो, ते श्री राम नूं भी राजा कहना छड़ दो, संत आखो। तुसी राजा राम आखी जांदे हो, राजा कृष्ण आखी जांदे हो, अपनी थां ते उत्ते थानू चाहिदा है ओ बंदा जिहड़ा धार्मिक भी होवे, सियासतदान भी होवे, ते जद साडी वारी आए ते कहिंदे नहीं जी धर्म नूं सियासत नालों अड करो। ते जे सियासत दे चों धर्म नूं अड कर दिता, ते सियासत ते गुंडियां दा अखाड़ा बन के रह जांदी है, चंगेज़ खान दा अखाड़ा बन के रह जांदी है। एक बड़ा प्रतिष्ठित गुंडा सी, तुसी आखो कि प्रतिष्ठित गुंडा, प्रतिष्ठित गुंडा। मैं बैठा सी कुछ सियासतदाना नाल, और उस गुंडे नूं मैं जानदा सी सुभावक, हुण इत्थे चल पई ए गल, ते मैं हुण लफ्ज़ रोक नहीं सकदा। 3-4 उसने कतल भी कीता, और जाती तौर ते भी मैं उसनूं जानदा सी, इस वास्ते कदी कदी कथा सुनन आउंदा सी। ते एक दिन जद उन्हां राजनीतिकां दे कोल मैं बैठा, राजस्थान दी गल, ते सारे राजनीतिक खड़े हो गए जद वो आया, ते मैं नहीं खड़ा होया। मैनूं कहण लगे गैनी जी खड़े हो जाओ, मैं क्यों इस गुंडे दे वास्ते खड़ा हो जावां, इन्हें 3-4 कतल कीते ने, ते जिस गली तो लंघदा लोकी करदे बूहे बंद कर छड़दे, ते जिस गली तो लंघदा लोकी सहम जांदे, ते पता मैनूं कहण लगे मस्कीन जी राजनीति में ऐसा चलता है। मैं कहा ठीक है, राजनीति में गुंडागर्दी चलती है, राजनीति में बदमाशी चलती है, राजनीति में ये कातिल लोग चलते हैं, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਸਰਬ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜੈਨੀ ਤੇ ਘਿਓ ਦੇ ਚ ਗਊ ਦੀ ਚਰਬੀ ਮਿਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿਲਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਛੱਡੇ, ਕਿਤਨਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੇ ਐਸਾ ਚਲਤਾ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਮੇ ਐਸਾ ਚਲਤਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚਲਤੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਚਲਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ, ਧੋਖੇ ਮਾਕਰਨੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਨਰਕ ਬਣ ਗਈ, ਹੋਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਚ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸਮੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੈ ਬਾਤ। ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚ ਗੁੰਡੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ, ਸਨਮਾਨਿਤ ਨੇ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੁੰਡੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਫਿਰਦੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੇ ਐਸਾ ਚਲਤਾ ਜੀ, ਧੰਦੇ ਮੇ ਐਸਾ ਚਲਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਥੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਔਖੇ ਬੜੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਵਤਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਵੀਰ ਨੰਗਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਵਤਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਗਾ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦਾ, ਤੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੈਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਰਲਾ ਜੈਨੀ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਿੱਲ ਓਨਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਟਨ ਮਿੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੈਨੀ। ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 70% ਜੈਨੀ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ। ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ 80% ਜੈਨੀਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਭਾਵਕ ਕਹਿ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਅਵਤਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਗਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੂਜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਪੈ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੱਪੜਾ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੱਪੜਾ ਵੇਚ ਵੇਚ ਕੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਪ ਤੋਂ ਬੜੇ ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਤੇ, ਕੜਵੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੜਵੇ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੂਰਤੀ ਨੰਗੀ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਉੜਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਕੌੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਤਨ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕੇਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਕਛੇਰਾ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਘਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਵੀਰ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਪਾਸ਼ਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਤਨ ਆਪਣਾ ਉਸ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਨ ਕੀ ਖਾਕ ਬਣਾਏਗਾ, ਕੀ ਬਣਾਏਗਾ? ਇੱਧਰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜਦ 300 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਬੰਦੇ ਬੋਲਣ ਆਏ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬੋਲਣ ਆਈ ਸੀ। ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ 22 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਦੂਰਬੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ, ਉਹ ਲਿਆਣੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ, ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਰਧਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੂਰਬੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਂਝੀ ਨੇੜੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਂਝ ਹੀ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ, ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ? ਦੂਰਬੀਨ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਦੂਰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਗ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਸਮਝੇ? ਇਸ ਅੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖੋ, ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦਿਨ ਆਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਖਾਂ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਜੋ ਹੈ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ, ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਤੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਹੋ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਹੋ, ਪਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰੋਂ, कि बंदे दियां आर्थिक लोड़ां समाजिक लोड़ां दे कोई रुकावट ना खड़ी होवे तो तौर तरीके बदलते रहे, किधरे शक्ति हुकूमत किंगडम, किधरे डेमोक्रेसी प्रजातंत्र, किधरे कम्युनिज्म सोशलिज्म, इस तरीके के तौर तरीके बदलते रहे, लेकिन बंदे दियां समस्यावां त्यों दियां त्यों रही। क्यों रही? इकबाल कहिंदे ने इस वास्ते कि जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगे दी। अगर सियासत नालों धर्म नूं अड कर दियो तां सियासत चंगेज खान का अखाड़ा बन के रह जाती है, हिटलर का टोला बन के रह जाती है, हलाकू का अड्डा बन के रह जाती है, वो तो बर्बादियां ही बर्बादियां करेगी। ये इकबाल दे बोल ने उस वक्त ऐसा इकबाल ने आख्या। तो फिर असी कोशिश की थी, असी रोज दीवान की समाप्ति तो बाद अपने गुरुदेव को ले मंग करनी शुरू की थी कि राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई, राज प्रबंध पवित्र हाथ दे बंदे च पवित्र हाथों दे च होवे ताकि कोई आकी ना होवे दुखी ना होवे। कोई किसे दा हक मारे ना, कोई किसे दा हक खोवे ना, राज सता सतवादी दे हाथे च होवे। सत ते सता दा असी सुमेल चाहते हां, धर्म ते राजनीति का सुमेल एकाग्रता बख्शनी।
1: एकाग्रता प्रदान करने हैं साहिबां दी हजूरी दे आए मुखवास सतगुरां दा हुक्मनामा सुच बुद्धि अनुसार इस दे अर्थ भाव अर्थ ते मौजूदा दौर दियां कुछ गल्लां विचारां आप जी दे समक्ष भेंट करां। इस तों पहले चली आ रही परंपरा अनुसार दास दी दोए कर जोड़ सनिमर फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दा जो अज पावन पवित्र वाक आया है उहदे अर्थ ते भाव अर्थ रखण तो बाद जो अज दी एकत्रता है ते अज दी एकत्रता दा जो उद्देश है ते सिंह साहिबान दा जो हुक्म है ते उहनां दे जो मते ने उहनां दा जो पंथ लई फर्ज ते हुक्म लागू करना है, ये सब कुछ नूं असीं अज शांतमई ढंग नाल सुनना है, धारण करना है ते उस ते अमल करना है। गुरु घर दी चली आ रही परंपरा दे मुताबिक मैं पहले कोई 5-10 मिनटां साहिबां दे वाक दे अखरी अर्थ ते भाव अर्थ करदे हां ताकि मैं सुतंत्र रूप दे कुछ विचारां अज दे समय दे थोड़े सामने भेंट कर सकां, अर्ज कर सकां। इस वास्ते आप परंपरा दे मुताबिक वाक प्रथम सरवण करो, एक एक पंक्ति दे अर्थ, फिर अगलियां गल्लां अगां करांगे। एक दफा प्यार नाल आखो सतनाम। सोरठ राग दे अंदर साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दा बख्शिश कीता ए पावन पवित्र वाक है। हां जी, उर्दू नजम दे जैसे किता है, रुबाई है, दोहा है, गजल है, नजम है, इस तरह संस्कृत साहिब दे ते पंजाबी साहिब दे कविता दी दुनिया दे दो पदे ने ते पदे हैगे ने, सौ पदे ने, पंच पदे ने, अष्टपदियां इत्यादिक ने, और इस तों इलावा छंद ने, मंगल ने, तो बेशुमार ये कवितावां दे अपने अपने नमूने ने। ये दो पदा है जिहदे च मेरे पातशाह ये फरमान कर रहे ने। हां, गुरु घर दी ये परंपरा है, जद गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे वाक चल रहे ने ते कोई नवा ख्याल किसे थां ते सतगुरु ने देना हुंदा है, नवी गल कोई आरंभ करनी आउंदी है, तां उहदे पहले मंगलाचरण हुंदा है। मंगलाचरण अज तक साडे देश दे साहित्यकार आलम लोग ग्रंथकार करदे रहे, गणेश दा ते सुरस्ती दा। सनातन मत दी ये धारणा है कि सिद्धि दाता गणेश है ते बुद्धि दाता सुरस्ती है। कवि लोग साहित्यकार लोग ते संगीत दे सम्राट पूजा करते ने सुरस्ती की, जिन्होंने सिद्धि चाहिए है, धन संपदा चाहिए है, कोई कारज सिद्ध करना है, वह पूजा प्रथम करते ने गणेश की। यह परंपरा चली आ रही थी गणेश की पूजा से सुरस्ती की पूजा। जे कोई साहित्यिक सम्मेलन है तो पहले पूजा सुरस्ती की, जे कोई आर्थिक सम्मेलन है तो पहले पूजा गणेश की। इस तरह यह सिलसिला साढ़े दौर जो है सनातन मध्य बड़े पुराने समय तो चले आ रहा है। गुरु नानक देव जी महाराज ने इस संबंध अपने ये विचार दिते, अगर सिद्धि दाता गणेश है और बुद्धि दाता सुरस्ती है तो फिर परमात्मा की तो कोई लोड़ ही नहीं। बंदे नू दो चीजा चाहिए ने, सिद्ध और बुद्ध। बुद्धि सारा ज्ञान आ जाता है, सिद्धि सारी संपदा आ जाती है। तो सारी संपदा बंदे नू मिल जाए, सारा ज्ञान बंदे नू मिल जाए तो होर किसी चीज की फिर लोड़ रही नहीं, मनुख के अंदर कोई भुख रही नहीं। पर परमात्मा तो छुट परमात्मा नू एक पासे रख के सनातन मत ने इस भुख की पूर्ति गणेश से सुरस्ती नाल जोड़ी। वो सुरस्ती जो है वह बुद्ध दाता है और गणेश जो है यह सिद्धि दाता है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जो मंगलाचरण आरंभ किया है उसका पहला अक्षर है एक, एक ओंकार। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का पहला अक्षर एक, और गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का जो मंगलाचरण है गुरमत्ते जो मंगलाचरण है उसका पहला अक्षर है एक। जपजी साहब का जो मंगलाचरण है उसका अक्षर पहला है एक। एक गिनती दे से उंज हिंसा है, पर गुरु नानक की रचना तो हिंसा के रूप च नहीं निकलिया, एक खसम की बाणी ब्रह्म वाक के रूप च निकलिया एक। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने एक है अनेक है, अनेक है फिर एक है। फिर साहब ऐसा भी कहते ने एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक। सारी अनेकता का जो आधार है वो एक है, ते इसे एक तो यह सारी अनेकता का जन्म है, एक मूल है, एक जो है आधार है। लेकिन एक ने ही अनेका रूप धारण किए हुए ने। जो अनेकता है इनू संसार कहने ने, जो एक है वह करतार है। जिथे तक आत्मा का गल है विचार चलेगी आत्मा की उसे एक है साढ़े शरीर दे, पर जिथे तक शरीरक संबंध की गल आएगी तो रूप बड़े ने। हुण एक बंदे दे सिर्फ कोई एक ही रूप दे उत्ते उसकी होंद नहीं खड़ी, अनेक रूप ने। एक बंदा जे किसी का प्यो है तो फिर किसी का पुत्र भी है, जे किसी का पुत्र है किसी का पति भी है, किसी का भरा भी है, किसी का पड़ोसी भी है, किसी का दोस्त भी। हुण बंदा एक है तो रूप उसके इतने ने। मनोविज्ञानी कहते ने जब बंदा पुत्रां दे सामने पिता दे रूप दे जांदा है ते चेहरे दे हाव भाव ते मानसिक मंडल कुछ होर होंदा है। ओही मनुख जब प्यो दे सामने पुत्र दे रूप च जांदा है ते चेहरे दे हाव भाव ते मन दे भाव कुछ होर ही होंदे। ओही मनुख जब पत्नी दे सामने पति दे रूप च जांदा है ते चेहरे दा रूप मानसिक मंडल मनुख का कुछ होर हो जाता है। उही मनुख जब मित्र के सामने मित्र के रूप च खड़ा होता है, पड़ोसी के सामने पड़ोसी के रूप च खड़ा होता है, तो चेहरे के हाव भाव से मानसिक संस्कार कुछ होर आते हैं। उही बंदा जब गुरु के सामने सिख के रूप च खड़ा होता है तो चेहरे के हाव भाव से मन दियां तरंगा कुछ होर आदि ने। हुण बंदा एक है तो रूप इसके इतने ने। एक किसी का सिख भी है, किसी का पुत्र भी है, किसी का भरा भी है, किसी का पिता भी है, किसी का पति भी है, किसी का पड़ोसी भी है, किसी का दोस्त भी है। जितने रूप पुरुष दे ने उतने ही ये रूप नारी दे ने। जे नारी किसी की मां है तो किसी की भैन है, किसी की धी है, किसी की पत्नी है, किसी की सहेली है, किसी की सिखणी है। मनुख पूरन ओही है जिदे ये सारे रूप बेदाग होवन। सारे रूप मैं हैरान हाँ जिन्हां दे हथ सता आउंदी है, कई दफा देखी दा समुचा देश ते ओदी सारी ताकत किसे दे हथ समेट दईदी है, ते कम से कम ओदे सारे रूप ते वेखने चाहीदे ने। किधरे ऐसा तो नहीं वो सारे रूप दावी ने जो मेरे पढ़न दे चाया चंगी पुत्री नहीं साबत हो सकी। पिता पिटदा ही रहा, आले दुआले दे बुजुर्ग मुखालफत करदे रहे पिता दा दिल तोड़ के और चंगे चंगे बुजुर्गां दी विचारां ते लत मार के उन्हें कदम चुकया, चंगी पुत्री नहीं साबत हुई। अगावे चलिए फिर चंगी पत्नी भी नहीं साबत हुई। पति हस्पताल दे बीमार पिया रहा, तलाक हुई, पुछण तक नहीं गई, चंगी पत्नी नहीं साबत हुई। अगावे चलिए जो कुछ मां ते पुत दा झगड़ा मनजर आम ते आंदा रहा उत्थों एक गल स्पष्ट हो गई, चंगी मां भी नहीं साबत हुई। फिर होर मैं अगे चला ते जो मैं देखया चंगी सस भी नहीं जो है साबत हुई। रात नू 12 बजे नूनू घरों कढ़ छड़िया, फिर चंगी दादी भी नहीं साबत हुई। पोतरा रोंदा ही रह गया, पिटदा ही रह गया। जो चंगी धी नहीं साबत हुई, जो चंगी पत्नी नहीं साबत हुई, जो चंगी मां नहीं साबत हुई, जो चंगी सस नहीं साबत हुई, जो चंगी दादी नहीं साबत हुई, क्षमा करनी वो चंगी राजपाठ दी करंदा किस तरह साबत होगी। मनुख दे इना सारे रूपां तो ही अंदाजा लाईदा है कि वाकई ये मनुख की है। कमाल दी गल जिंदगी दे हर पहलू दे जिस दी जिंदगी दागी होवे ते समुच्चा देश उहदे हत्थां च दे दिता जाए तो देश बर्बाद नहीं होएगा ते होर की है, देश तबाह नहीं होएगा ते होर की है। मैं अर्ज कर रहा सी जैसे अकाल पुरख एक है ते एक होंदे होया उहदे रूप अनेकां ने, उसने ए नियम मनुख दे नाल भी लागू कर दिता है ते मनुख दे भी रूप अनेकां ने। जे पुरुष किसे दा प्यो है, किसे दा पुत्र है, किसे दा पति है, किसे दा पड़ोसी है, किसे दा मित्र है, इसी तरीके नाल ए सारे रूप नारी देने। ते चाणक ने, भर्तरी ने और बिदर ने अपने नीति दर्पण विच लिखे है, इन्हां तीन महापुरुषां ने राज है बिदर नीति दर्पण, ते तीसरा राजयोगी भर्तरी दा जिहदा नां है नीति शतक। ए तिन्ने ग्रंथ राजनीति दिते ने, ते तिन्ने महापुरुष इस गल ते जोर देंदे ने कि राज सिंघासन ते जद किसे नू बिठाओ ते वेख लेना उहदी समाजिक जिंदगी की है। अगर उस समाजिक जिंदगी दे कामयाब नहीं, समाजिक जिंदगी उसकी सारी दाही है, तो सियासी जिंदगी उसकी पवित्र नहीं हो सकती, उसकी पावन नहीं हो सकती, बेदाग नहीं हो सकती। ते इंज लगदा सदियां दी जिहड़ी इस देश दी गुलामी है ना, उन्हां नूं हुण बंदा चुनण दी जात भी नहीं आंदी। हालांकि चोण दे उत्ते साडे सतगुरां ने ते बड़ा जोर दित्ता, उन्हां ने श्री चंद नूं इक पासे कर दित्ता, लखमी दास नूं इक पासे कीता, चुणिया ते लैणा चुणिया। और फिर कमाल कीती गुरु रामदास जी ने, परंपरा ते है कि वड्डा ही पुत्र चुणिया जांदा, ठुकरा के इक पासे कीता, सब तो छोटे नूं चुणिया। ते थोड़ी गल नहीं, चोण दे उत्ते गुरुआं ने बहुत वड्डा जोर दिता चोण गलत ना होवे। ते साडे देशवासियां नूं भी अधिकार दिते गए चुणो नुमाइंदा जिन्हों सारा देश सौंपना है, देश की संपत्ति, देश की असमत और देश की सत्ता हथां च देनी है। पर देखो ते सही, हथ बेदाग ने कि नहीं, हथ पवित्र ने कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं सोचा गया। उहदा कारण कि सदियां दी गुलामी ने सोचण दी समर्था ही खो ली है। पता है ये देश कितने साल गुलाम रहा है? आलम लोग ते कहंदे ने ये देश 2000 साल गुलाम रहा है। अफगानियां दा गुलाम रहा, ईरानियां दा गुलाम रहा, अरबियन लोगों का यह गुलाम रहा। इत्थे मंगोल आए, इत्थे डच आए, इत्थे पुर्तगेज आए, इत्थे फ्रेंच आए, इत्थे अंग्रेज आए, ये सारियां दा गुलाम। फ्राइड कहंदा है जेड़ा देश एक दिन लई गुलाम हो जाए तो वह एक साल पछड़ जांदा है, वह देश एक साल पछड़ जांदा है। तो जेड़ा देश एक साल लई गुलाम हो जाए ਉਹ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪਛੜ ਜਾਂਦਾ, ਸੌ ਸਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ 2000 ਸਾਲ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ, ਇੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸਨ ਜਾਪਦਾ, ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਇਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੁਰਦਾ ਸਨ ਸਰ। ਜੀਵਦੇ ਜਾਗਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ ਰਾਜਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਤਨੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਪਤਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਦ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣਾ ਢੰਗ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੇਖੋ ਠੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਏ, ਇੰਜ ਹੱਥ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪੈਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਠੰਡੇ, ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੰਡਾ ਤੇ ਮੁਰਦਾ, ਇਹ ਸਬੂਤ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੱਥ ਠੰਡੇ ਪੈਰ ਠੰਡੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵੈਦਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਢਿੱਲਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ 2-3 ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇੰਜ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੈਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਠੰਡੇ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਰ ਬੜੇ ਠੰਡੇ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਹੋਣਾ, ਸਿਹਤ ਅੱਧੀ ਖਰਾਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁਰਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮੁਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਮੁਰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਧੁੱਖੇ ਮੈਂ ਕਰਨੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਠੰਡਾ ਇਤਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੰਮ ਕੇ ਬਰਫ ਕਬਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਠੰਡੇ ਪੈਰ ਠੰਡੇ। ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੱਥ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੱਚ ਕਰਮ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਰਦਾ ਠੰਡਾ, ਇਹ ਜੋ ਠੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਤੱਲੀਆਂ ਮਲਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਵੈਦ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਦ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਲੀਆਂ ਮਲ ਹੋਏ, ਗਰਮਾਹਟ ਆ ਜਾਏ, ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਚੱਲ ਪਏ, ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਲੀਆਂ ਮਲਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਖੂਨ ਦੇ ਸ਼ਰਵਾਨੀ ਆਈ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਮੁਰਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਮੰਗ ਕਰੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਖਾਲਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕੋਲ ਸ਼ੁੱਧ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਖੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਖਾਲਿਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਰੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੇਜ਼ਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੇ ਇਸ 35-36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਲਾਕਾ ਖੋਲੋ, ਪਾਣੀ ਖੋਲੋ, ਬਿਜਲੀ ਖੋਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਖੋਲੋ, ਸਭਿਅਤਾ ਖੋਲੋ, ਰੂਪ ਖੋਲੋ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਖੋਲੋ, ਧਰਮ ਖੋਲੋ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਡਾਕਾ। ਅਸ਼ੁੱਧੀ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਚ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਖਾਲਿਸ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੁੱਗੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ 75-80 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘੋੜਾ ਰੋਕਿਆ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਤੇ ਉਸ ਬਿਰਧ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ, ਜ਼ਈਫ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਣਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, آخن لگا ہاں رومانا تے ہور کی کیونکہ دیش دا راجہ ایک سکھ ہے. پھر نہیں میں اس بڈھے کا پھر نہیں پوچھا کیتا تے مہاراجا صاحب کہنے لگے دیش دا راجہ ایک سکھ ہے تے اے دے تینوں کی دکھ ہے تو کیوں دکھی ہیں تو کیوں رو رہے ہیں. کہنے لگا 20 سال لگاتار محنت کر کے میں سنہری اکثر ترجمہ کر کے قرآن شریف لکھی ہے 20 سال دی میری محنت. کوئی مسلم بادشاہ آؤں یہ توشے خانے چ رکھا جا کوئی مسلم بادشاہ آؤں یہ پڑھتا اور یہ پرجا بھی پڑھتی اور عام دنیا تک میری یہ قرآن شریف پہنچائی جاتی ہے. پر بدقسمتی دیش کا راجا ایک سکھ ہے. سونے کی موراں کی تھیلی اس شاعر اس عالم دے اگوں رکھی تے آخیا بابا اے قرآن شریف مینو دے میں توشے خانے چ رکھاں گا سارے دیش واسیاں تک یہ دیدار کراواں گا تے میں تینوں ہور بھی مالا مال کرنا ہے تو میرے راج دربار چ آویں. اے تھیلی میری پیٹا دے روپ وچ نظرانے دے روپ وچ پروان کر. کھڑا ہو گیا بڈھا کہن لگے ہیں میں تے فضول رو رہا سی معافی منگی اپنے شبد واپس لے. تو اتوں گل سپشٹ ہو گئی آکی رہے نہ کوئے مہاراجا رنجیت سنگھ نے اس دھرم نال راج پاٹ چلایا کوئی آکی نہ ہویا بیزار نہ ہویا کوئی دکھی نہ ہویا. تے کھما کرنی انہ 35-37 سالاں وچ راج پربندھ اس دھرم نال جو ہے چلے ہیں کدھرے آسامی پہ روندے نے کدھرے آندھرا پردیش دے روندے پے نے کدھرے کشمیری پہ روندے نے کدھرے مسلم پہ روندے نے اور ہن زارو زار رلا کے رکھ دیتا پنجاب نو تے پنجاب دے جو ہے سکھاں نو. تو خیر اس طرح دی منگ ہے اے ساڈی ہے. تو میں اس طرح جیسے پرماتما ایک ہے انہیں اپنی مخلوق دے بھی انیکاں روپ جو ہے بنائے ہوئے نے تے پرماتما دے انیکاں روپ بے داغ نے منکھ بھی اوہی ہے جہدے انیکاں روپ بے داغ ہون. گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دی بانی ایکے تو شروع ہوندی ہے. گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دا پہلا اکثر ایک ہے اور گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دا فرمان ہے کہ ہے پربھو تُو ایک ہے انیک ہے انیک ہے پھر ایک ہے. ایک مورت انیک درشن کین روپ انیک کھیل کھیل اکھیل کھیلن انت کو پھر ایک. تو یہ منگلا چرن ہے شبد دوتے ایک ہے اوہنکار اوہنکار شبد تین شبداں دا جوڑ ہے اکار اکار مکار اتپتی کرن والا پالنا کرن والا ناس کرن والا. ایک اوہنکار ایک تو اتپتی ہو رہی ہے پالنا ہو رہی ہے ناس ہو رہا ہے. وہ جڑا ایک اوہنکار ہے وہ سچ ہے سدیوی ہے قائم دائم ہے ہمیشہ. ایک اوہنکار ست گر پرساد وہ جو ایک ہے وہ سوتپتی ہو رہی ہے پالنا ہو رہی ہے ناس ہو رہا ہے وہ اوہنکار ہے. وہ جڑا اوہنکار ہے وہ ست ہے اور وہ جڑا ست ہے وہ گرو ہے. ایکاگرتا پردان کرنی وہ گرو ہے چاننا دین والا ہے پرکاش دین والا ہے. اور وہ جڑا گرو ہے وہ پرساد ہے دیالو ہے بخشند ہے کرپالو ہے. تو یہ ہے منگلا چرن. ہوں اگے آپ واک سرون کرو ایک دفعہ پیار نہ لاکھو ست نام. ہاں جی اج دا جڑا پاون پوتر واک امرت ویلے آیا ہے وہ بھی اس ہری مندر صاحب اس امرت سروور دے سمبندھ وچ آیا ہے جس کی وقت دے ستاداریاں نے رج کے بے حرمتی کیتی ہے جس نے رج کے بے ادبی کیتی ہے. رام داس سروور ناتے اتنی گل تے سپشٹ ہے کہ امرتسر نو گرواں نے وسایا گرواں نے بخشش دیتی گرواں نے پوترتا دیتی اور اس ساری دنیا نو سہجے سہجے پتا چل رہا ہے کہ سکھ جگت دے کتنی کشش امرتسر لئی کیوں ہے. سکھ جگت دے اندر تڑپ اتنی امرتسر دے لئی کیوں ہے اور مر مٹن دی بھاونا اتنی کیوں ہے. میں تے اتنی عرض کر رہا جڑے شہید ہو گئے اتنے قابو چ آئے چاروں پاسے چل گئے ਪਰ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਖੁੱਲ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ ਆਉਣ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੌਮ ਜੀਵਦੀ ਹੈ ਜੀਵਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤਲੀਆਂ ਮਲਦੇ ਨੇ ਗਰਮਾਸ਼ ਆਵੇ ਗਰਮੀ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਤਲੀਆਂ ਮਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵਦੀ ਜਾਗਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀਵਦੀ ਜਾਗਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੋ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਆਇਆ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਰਾਮ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਚ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਰਾਮ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਉਹਦੇ ਚ ਜਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਜੋ ਹੈ ਨਹਾਏ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਸਨ ਤੇ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਪਾਪ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਇਸਲਾਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਈਸਾਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਈਸਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਮਛਲੀ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ ਜੋ ਹੈ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਮੈਦਾਨ ਏ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਕਹਿ ਦੇ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਹਥੋ ਮਰ ਗਏ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਪ ਆਖੋਗੇ ਕੀ ਪਾਪ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਗਊ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਮਛਲੀ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਧਰਮ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਉਹ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋਦੀ ਸੇ ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾ ਦਾਸੀ ਲੂਟੇ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਰ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੇ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਹੈ ਜੋ ਮਲੀਨ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਖੜਾ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਟ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਪਖੰਡ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰੀਏ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਮੰਨੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਤੇ ਮਲੀਨ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਮਲੀਨ ਕਰਮ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਪ ਆਖੋਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੰਨ ਆਖੋਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਬੜਾ ਗਲਤ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਬਈ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਜੇ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕੀ ਪੜਨੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੜਨੀ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਇੰਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਬਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਚ ਜਾਓ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਦੇ ਚ ਜਾਓ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਗਲਤ ਇਹ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ ਜਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ ਗਲਤ ਇਤਨੀ ਹੈ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਮੁਹਾਵਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਬਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮਹਿਲ ਕੱਢ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਸਵੱਛ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਬਣ ਤੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਤੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕੁਛ ਮੁਹਾਵਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਏ ਬਾਣੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਉਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਉਹ ਤੇ ਪਖੰਡ ਹੈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸ ਹੈ ਲੂਟ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਤੇ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ دو سوال نے انہاں دو سوالوں کا جواب ایک دتا گیا. انہوں بھائی صاحب بھائی سنتوک سنگھ جی کہندے نے پرشن انیک ایک جائیں.